0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: नॉटी होने का बेस्ट पार्ट पता है कौन सा होता है? राइट बिफोर गेटिंग नॉटी विद समवन, तुम पहली बार उस बंदे को किस करने वाले हो, तुम्हें पता है कि ये किस होने ही वाली है, तुम्हें पता है कि ये इनएविटेबल है, लेकिन वो बंदा और तुम उसके घर हैंग कर रहे हो और ड्रामा कर रहे हो कि आज कुछ नहीं होगा, बस देख ही तो रहे हैं नेटफ्लिक्स एंड चिल, लेकिन अभी तक चिल वाली स्टेज आई नहीं है. फिर क्या होता है कि रिमोट कंट्रोल के बारे में लड़ाई होती है. आई वांट वॉच दिस यार, एंड देन ही लाइक आई वांट वॉच दैट यार, और एक दूसरे के हाथ से रिमोट छीनते छीनते कैसे तुम्हारे फेसेस पास आ जाते हैं. ओ माई गॉड, रिमोट कंट्रोल हैज बीन रिप्लेस्ड बाई ईच अदर्स लिप्स. ये सिर्फ मेरी स्टोरी नहीं है, एक्चुअली ये मेरी स्टोरी है भी नहीं, ये मेरी बेस्टी की स्टोरी है जिसका नाम मैं लूंगी नहीं, क्योंकि फिर आप उसे ट्रोल करोगे और बोलोगे और बता, बिकॉज दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई डिड विद हर. बट द पॉइंट इज, अगर आपकी भी जिंदगी में पहली किस ऐसे ही हुई थी फाइटिंग ओवर रिमोट कंट्रोल, या आपका कंगन खो गया था एंड देन ही हैड द कंगन एंड ही सेड और पास और पास और पास एंड देन यू किस्ड, आई कैन डाई फॉर स्टफ लाइक दिस. टेल मी योर स्टोरी, मुझे मरने से बचा लो. मेरा नाम है मिर्ची रोशनी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, एंड आई एक्चुअली डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई किस्ड समबडी. ऑन दैट सैड नोट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस

0: Milci. Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vinfa la burga.
1: Milci, burga. हेलो
2: हेलो, ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
2: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का किला, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: अरे, तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे चाहिए होते हैं।
2: देखिए, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? नहीं, हमने कब लिया आपसे?
1: अरे, तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue.
3: 750
1: only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: 750 ना भाई, तेरे 1500 लगेंगे। हमारी बात समझ में ना आ रही, लाजवंती की एकदम घेजे में बढ़ गई।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची। It's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: लोग बेडरूम में नॉटी होने के लिए न्यूटेला या मोल्टन चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका किंक है चटनी इस्तेमाल करना।
3: The secret box.
2: Look, you know what? Gross as it is, it doesn't matter. जो भी आपकी कन्फेशन है, this is a place to talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है I can't even get over the chutney bit. R-O-C-H-I-E has spelling. Find me on the gram or Facebook. We'll get talking. And for right now, mere saath hai mere mystery caller. Hello, naughty boy.
4: Hi, Roshi. Kaise hain aap?
2: Yaar, main to bahut achhi hu. Aap itne cute sound karte ho na, bhole se. Aur aapki jo maine photos dekhi hain in your Insta profile, you are so hot, yaar.
4: Thank you, Roshi. Means a lot.
2: Oh, cutie pie. Achha, aapne jo mujhe apna confession leke bheja tha Instagram par. उसे देखकर मैं काफी हैरान भी थी और ऑनेस्टली स्पीकिंग फुल डिस्क्लोजर में थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
4: सो रोशि, आई वाज इन योर इंस्टाग्राम लाइव, तब वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस आपके उस पे कमेंट कर रही थी. तो फिर हम दोनों की, मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन she told me कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहाँ, मिले एंड हमने डिनर किया. फिर मैंने सोचा कि उन्हें घर छोड़ देता हूँ. और रोशि, जब हम कार में बैठे तो मतलब आई एम लाइक दैट पर्सन कि यार अभी कुछ एकदम से स्टार्टिंग है रिलेशनशिप का, या मैंने तो अभी प्रपोज भी नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे किस कर दिया अचानक से. मेरे लिए बहुत ऑकवर्ड हो गया. मैं डर गया कि मतलब यार ये क्या हो गया, कि करा उन्होंने स्टार्ट था बट ये गलत ना समझ जाए ये क्या हो रहा है ऐसे. तो मैं समझ ही नहीं पा रहा था क्या करूं. देन रूसी थोड़ी सिचुएशन और ऑकवर्ड हो गई. थोड़ा और पास आए और फिर मतलब कैसे मैं बताऊं आपको. फिर उन्होंने पैन के अंदर हाथ डाल दिया. तो मैं तो रोशि डर गया, बिकॉज मैं ममाज बॉय हूँ. मैं अगर मम्मी को बता के भी आता हूँ कि यार मम्मी मैं डेट पे जा रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आया, फिर मम्मी को क्या बोलूंगा ऐसा ऐसा कुछ हुआ. और मुझे शादी के बाद ही करनी थी ये चीजें, तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था. मतलब मुझे मना भी करना था. मैंने कहा यार रूट भी नहीं हो सकता, बंदी भी अच्छी है. बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए.
2: मैं तो आपसे जानना भी नहीं चाहती हूँ कि अल्टीमेटली फिर सब कुछ हो गया कि अभी कुछ कुछ बाकी है. अब तो मैंने
4: रोशि, उसके बाद मैंने फिर बहाना करा कि मम्मी की कॉल आ रही है मैं अभी आता हूँ दो मिनट में. तो मैंने कहा नहीं नहीं यहीं से साइड में पापा को उठाना है, तो आप प्लीज रिक्शा में चली जाओ.
2: भाई मैंने इनफ नमूनों से बात कर ली ऑलरेडी, लेकिन आप जैसा तो कोई भी नहीं है. मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ जिसमें आपकी मम्मी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मिस्ट्री कॉलर.
4: प्लीज
0: यू've been roshified.
2: Oh God, it was amazing talking to you, mystery caller. I just hope that I don't have the privilege of seeing you in person, क्योंकि शायद मैं आपसे बात करते करते उस लड़की की तरह tempt हो जाऊँ. ठीक है आप अगर मेरे मिस्ट्री कॉलर की तरह आप भी निहायत ही शर्मीले किस्म के इंसान हो, देन आई थिंक वी शुड टोटली टॉक जस्ट फॉर अ लार्क. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. सो हिट मी ऑन इंस्टाग्राम या FB, बट व्हाटएवर यू डू, कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: हैप्पी जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: मिर्ची रोशी
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया'स नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

रोशी थ्योरी नंबर 642 के लिए तैयार हो जाइए। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम किसी के पीछे पीछे भाग रहे होते हैं तो सामने वाला इंसान क्या दौड़ लगाता है एंड देयर लाइक लुकिंग एट अस एंड सेइंग कि हाँ सोचेंगे करेंगे और हमें ये लग रहा है कि भाई यही बंदा है, इसी के साथ सारी जिंदगी गुजारनी है। एंड देन एक दिन 480 दिनों के बाद यू वेक अप एंड रियलाइज कि हाँ ठीक है यार, इसके पीछे भागना बंद कर देते हैं। कट टू, जैसे ही आप भागना बंद करते हो वही इंसान आपके पीछे पीछे भागना शुरू कर देता है। एंड देन यू आर लाइक एक सेकंड, जब मैं जिंदगी के 4 साल तेरे पीछे भाग रही थी तब तुझे मेरी वर्थ नहीं समझ में आई और अब जब मैंने तुझे देना बंद कर दिया है suddenly you realize that I am the it girl। ऐसा होता है, ये मुझे पता है, ऐसा क्यों होता है मुझे अभी तक समझ नहीं आया। और अगर आप भी ऐसे ही chasing and acting के शिकार हो then why don't you hit me up, we will compare notes। और वो करने के लिए आप मुझे ढूंढ सकते हो इंस्टा पर या FB पर, मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE, so go ahead and do whatever you have to do, लेकिन कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot।

0: Mitchie. R-O-C-H-I-E.
1: Roshi, Roshi.
2: Mitchie Roshi.
3: Only on Radio Mitchie New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
4: I never thought about it this way, yaar. But I suddenly saw like this Instagram ka ek bahut hi cute reel. Us pe likha tha ki अल्टीमेटली इट्स अबाउट आप किस इंसान को सबसे पहले टेक्स्ट करते हो व्हेन यू लैंड एट द एयरपोर्ट. और मैं सोचने लगी कि ये सच है. जैसे ही मैं एयरपोर्ट पे लैंड करती हूँ और अपना फ़ोन स्विच ऑन करती हूँ, हु इज द फर्स्ट पर्सन दैट आई टेक्स्ट. एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज कि मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट इंसान मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा नहीं है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है. जैसे ही मैं लैंड करती हूँ आई एम लाइक मैं पहुंच गई हूँ, मुझे भूख लग रही है, कितनी गंदी राइड थी ये, इससे बेटर तो मैं एक ट्रेन ले लेती. ये सब बकवास. फ्लाइट आफ्टर फ्लाइट आफ्टर फ्लाइट मैं अपने बेस्टी के साथ करती हूँ. अनबिलीवेबल. आप मुझे बताओ, जब आप लैंड करते हो तो हु इज द फर्स्ट पर्सन दैट यू टेक्स्ट? हाँ, एंड टेल मी अबाउट दैट. यू कैन हिट मी अप इंस्टा पर या FB पर. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. टेक्स्ट मी फर्स्ट ना प्लीज. एंड ऑन दैट नोट, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: होगा कालिया।
1: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार।
0: अब
2: मिर्ची का
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: 2006 हो, 2016 हो या 2026 हो, ये जालिम जमाना आपके रिलेशनशिप के बीच में आता क्यों रहता है? और अगर ऐसा हो रहा है, why don't you hit me up? हो सकता है, two is better than one and we might come up with a solution for your relationship hazard. So why don't you do this one very cool thing? Why don't you hit me up Insta पर या FB पर? मेरा नाम है मिर्ची रोशी. I'm the specialist जो इस जालिम जमाने को मक्खी की तरह out of your चाय निकालकर साइड पे करने की कोशिश कर सकती है. नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. And while you do that, मेरे साथ लाइन पर गीत है. Hello. Hi Geet, what's up?
3: All good.
2: All good, huh? Is there a story you want to tell me which is like a super cute story?
3: Yes, ma'am.
2: First things first, aap karte kya ho?
3: Abhi to main, mera college complete hua hai aur abhi main teaching kar rahi hu.
2: Oh, wow. That is so cute. Aapki love story kya hai? Ha, dil toota hua hai, juda hua hai. Is there a love story? Is there a breakup story? What is the story?
3: अभी तो लव स्टोरी शुरू होते साथ ही खत्म होने वाला है ऐसा लग रहा है.
2: क्यों?
3: क्योंकि मम्मी ने मतलब हमें ऐसे थोड़ा पकड़ लिया था.
2: थोड़ा कैसे पकड़ लिया था भाई? या तो पूरा पकड़ते हैं या नहीं पकड़ते हैं. थोड़ा कैसे पकड़ते हैं?
3: हाँ.
2: अच्छा, तो हुआ क्या? टेल मी द स्टोरी.
3: हाँ, ये मेरे घर के पास रहता है.
2: ठीक है.
3: अब क्या हुआ कि हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं.
2: हाँ.
3: अब ये एक दो सालों में ना इसने बोला मुझे कि मैं मतलब तुमको पसंद करता हूँ, तो कहीं ना कहीं मैंने उसको लाइक करती थी.
2: हाँ.
3: अब उस बंदे का सामने से आया है.
2: हाँ.
3: बोली चलो ठीक है, बातचीत करके देखते हैं.
2: हाँ.
3: अब इसने ना मुझे एक बार घर बुलाया, मतलब ऐसे ही.
2: हाँ.
3: कैजुअल मीटिंग के लिए.
2: हाँ.
3: तो फिर ऐसे हम लोग मिले मिले फिर.
2: हाँ.
3: अच्छा सेकंड टाइम बोला कि अब आना करके. हमने हग वगैरह किया.
2: हाँ.
3: उसके बाद में फिर उसकी मम्मी मतलब आ गई उसकी बहन के साथ में. तो फिर हमको देख के गलत समझी, मतलब ऐसे देखिए नहीं कि हम कुछ कर रहे थे, बस बोली कि डोर क्यों लॉक था करके. तो मैंने तो नॉर्मल ऐसा बोला कि नहीं आंटी ऐसा कुछ नहीं था करके.
2: हाँ.
3: मेरे को आंटी देखी हंसी थोड़ा सा. उसके साथ में फिर बंदे को बहुत सुनाई जब मैं चले गई घर की.
2: हाँ.
3: ये सब करता है ये वो.
2: हाँ.
3: तो आप बताओ कि सर मैं क्या कर सकती हूँ?
2: अब आप तो कुछ नहीं कर सकते ना, ये तो आंटी को लग रहा है. अब ये आंटी की प्रॉब्लम है, आप आंटी की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हो? बट व्हाट इज योर क्वेश्चन कि इस बंदे का क्या करना है या बंदे की मम्मी का क्या करना है?
3: हाँ मतलब बंदे की मम्मी का क्या करना, मतलब मैं जाके सॉर्ट करने की कोशिश करूँ?
2: आई डोंट थिंक सो ऑनेस्टली, बिकॉज आपकी जगह नहीं है वो. आप तो आपका कनेक्शन बंदे के साथ है, करेक्ट? बंदे का कनेक्शन उसकी मम्मी के साथ है. तो बंदा और आप अपनी जिंदगी देखो कि आगे क्या करना है, हक करना है, दरवाजा लॉक करना है या नहीं. दैट इज अ डिसीजन दैट यू हैव टू मेक. लेकिन एज फार एज द गाय इज कंसर्न्ड, उसकी मम्मी को समझाना या उसकी मम्मी को क्लैरिफिकेशन देना वो उसका काम है. टिल ही आस्क्स यू स्पेसिफिकली कि भाई मेरी मदद कर दे, आई एम रियली कंफ्यूज्ड, या मम्मी बात नहीं सुन रही है, आई नीड यू टू टेल मम्मी कि उस दिन क्या हुआ सच सच, जो भी. जब तक वो आपसे नहीं कहता है कि हाँ मेरी मदद कर दे इसे रिजॉल्व करने में, आपको ज़रूरत नहीं है उसके रिलेशनशिप विद हिज मॉम में पढ़ने की.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison. Gali mein.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

अगर कभी मैं जिंदगी में भगवान के साथ एक कॉफी डेट पर हूँ ना और वो मुझसे फीडबैक मांगे ह्यूमैनिटी के बारे में, आई वुड टेल हिम कि जब आदमियों को, स्पेशली द इनसेंसिटिव वंस को, आप इस धरती पर भेजते हैं तो कृपया करके उन पर एक मार्क लगा दे, जैसे सर पर एक मोटा सा तिल या एक तीसरी आंख बिल्कुल चीक के बीच में, ताकि औरतों को समझ में आ जाए कि ये बंदा इनसेंसिटिव है और इसके साथ बात करने का कोई फायदा नहीं है। फॉर इंस्टेंस, आई वॉज टॉकिंग टू वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स और मेरी मम्मी की तबियत आजकल ठीक नहीं है, वो ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट्स रॉन्ग विद हर एंड स्टफ, तो मैं बहुत परेशान हो रही थी एंड आई थिंक आई गॉट वेरी इमोशनल। तो मैं इमोशनल हो रही हूँ कि डॉक्टर्स को समझ नहीं आ रहा मम्मी को क्या हुआ, ये वो मुझे कह रहा है बंदा, आर यू श्योर तू PMS नहीं कर रही है? एंड आई वॉज लाइक, अभी पता है एक चीज है दैट आई एम श्योर ऑफ, कि अगर मेरे हाथ में एक चाकू होता तो तेरी नस में स्लो मोशन में काटती। मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है दैट इफ यू आर एन इनसेंसिटिव पर्सन, अपने ओपिनियन को ना थोड़ी देर के लिए दबा कर रखना, स्पेशली अगर अ वुमन इज शेयरिंग वेरी डीप फीलिंग्स विद यू, क्योंकि हम तुम्हें ट्रस्ट करते हैं, इसीलिए तुम्हें बताते हैं हमारे अंदर क्या चल रहा है। और जब तुम ऐसे बकवास करते हो ना, हमारा मन करता है सारी ह्यूमैनिटी में से मेल्स माइनस हो जाएं। अगर आपको भी अपने बेस्ट फ्रेंड पर बहुत गुस्सा आ रहा है, why don't you hit me up? We will compare notes. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है RochiE. So go ahead, do what you need to do. लेकिन कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यहीं है आना। सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

only on Radio Mitchell New York. It's hot.

0: Mirchi Roshi.
1: Only on Radio Mirchi New York. South Asia's number one radio station. It's hot.
2: जैसे स्कूल में प्री बोर्ड्स होते हैं ना, बोर्ड से बिल्कुल पहले टू फिगर आउट कि आप कितने प्रिपेयर्ड हो अपने एक्चुअल बोर्ड एग्जाम्स के लिए, वैसे ही डेटिंग और रिलेशनशिप यूनिवर्स में देयर इज एक्चुअली समथिंग कॉल्ड प्री डेटिंग. तो प्री डेटिंग का मतलब ये होता है, और मेरी बेस्टी ने मुझे ऐसे एक्सप्लेन किया है क्योंकि वो खुद एक प्री डेट पर गई थी. उसके ऑफिस में एक कॉलीग है, ये दोनों बहुत क्लोज हैं एंड देयर रियली गुड फ्रेंड्स. पिछले 6-7 महीने में देव बिकम वेरी गुड, एक्चुअली काफी थिक फ्रेंड्स, लेकिन ऑफिस के बाहर ये कभी नहीं मिले. तो शी सेड कि मैंने उसे बोला कि चल हैंग आउट करते हैं एक दिन, लेट्स गेट सम कॉफी एंड अर्ली डिनर. तो शी सेड मैं ये सब इसलिए कर रही हूँ बिकॉज दिस इज अ प्री डेट. आई वॉज लाइक उसका मतलब क्या होता है, एंड शी इज लाइक आई वॉन्ट टू फिगर आउट कि जब हम इस डेट पर जाएंगे कोट एंड कोट हमारी वाइब क्या है. इफ वी एंड अप वाइबिंग लाइक अ प्रॉपर कपल तब हम इसे एक चांस दे सकते हैं और एक्चुअल डेट पर जा सकते हैं. अगर हमें ऐसा लगेगा कि यार हाँ ठीक है हैंग आउट कर रहे थे बट काफी दोस्त वाली वाइब आई एंड हाँ ठीक है ऑफिस में चिल करना इज बेटर, देन हम डेट नहीं करेंगे, डेट पर नहीं जाएंगे. तो ये प्री डेट इज अ टेस्टर सॉर्ट ऑफ सिचुएशन एंड आई वाज लाइक एज इफ डेटिंग वाज नॉट कॉम्प्लिकेटेड टू स्टार्ट विद. आपने भी कभी ये प्री डेट वाला पैंतरा ट्राई किया है अपने रिलेशनशिप में? अगर हाँ देन

0: Mitchy Roshi.
1: Only on Radio Mitchy New York, South Asia's number one radio station. It's hot.
2: लोग बेडरूम में नॉटी होने के लिए न्यूटेला या मोल्टन चॉकलेट इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आपका किंक है चटनी इस्तेमाल करना.
3: The secret box.
2: Look, you know what? Gross as it is, it doesn't matter. जो भी आपकी कन्फेशन है, this is a place to talk about it. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है. I can't even get over the chutney bit. R-O-C-H-I-E has spelling. Find me on the gram or Facebook. We'll get talking. And for right now, mere saath hai mere mystery caller. Hello, naughty boy.
4: Hi, Roshi. Kaise hain aap?
2: Yaar, main to bahut achhi hu. Aap itne cute sound karte ho na, bhole se. Aur aapki jo maine photos dekhi hain in your Insta profile, you are so hot, yaar.
4: Thank you, Roshi. Means a lot.
2: Oh, cutie pie. Achha, aapne jo mujhe apna confession leke bheja tha Instagram par. उसे देखकर मैं काफी हैरान भी थी और ऑनेस्टली स्पीकिंग फुल डिस्क्लोजर में थोड़ा सा हंसी भी थी. तो एग्जैक्टली हुआ क्या था वारदाते रात को?
4: सो रोशि, आई वाज इन योर इंस्टाग्राम लाइव, तब वहां पे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की आपके मैसेजेस आपके उस पे कमेंट कर रही थी. तो फिर हम दोनों की मैंने सोचा कि चलो इनसे बात करता हूँ, बिकॉज उनकी प्रोफाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. हम धीरे धीरे बात करने लगे. फिर एक दिन she told me कि चलो मिलते हैं सेम जगह. तो हम गए वहां मिले एंड हमने डिनर किया. फिर

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

0: चर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: मिर्ची रोशी
5: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।
6: एक चीज जो मैंने अपने रिलेशनशिप्स में सीखी है ना, वो ये है कि अगर हम अपने रिलेशनशिप में इंटरेस्टिंग नहीं रहेंगे, देन हमारा पार्टनर हम में इंटरेस्टेड होना कम हो जाएगा। एंड द वन प्लेस जहाँ पर आप बहुत इंटरेस्टिंग हो सकते हो इज एक्चुअली दैट इंटीमेट स्पेस ऑफ बीइंग इन अ बेडरूम विद अ पर्सन। और अगर आप एक रिलेशनशिप में हो, देन अकॉर्डिंग टू अ वेरी इंटरेस्टिंग रिसर्च, तीन जो कॉमन फैंटेसीज होती है लोगों की इन बेड, वो ये होती है, पहला तो गेटिंग टाइड अप, दूसरा टू हैव अ थर्ड पार्टनर इन द रिलेशनशिप जब इंटीमेट हो रहे होते हैं, और तीसरा एक रोल प्ले का सिनारियो। अब कुछ कुछ लोगों के लिए ये तीनों चीज़ें आर लाइक टॉप ऑफ द लाइन, आप तीनों ट्राई कर सकते हो। कुछ लोगों के लिए इन तीनों में से नथिंग वर्क्स, एंड फॉर सम पीपल इन तीनों में से एक या डेढ़ चीज़ चल सकती है। बट द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि अपने रिलेशनशिप में जहाँ तक आप कंफर्टेबल हो, समटाइम्स pushing the boundary is not a bad thing, especially अगर आप एक long term relationship में हो। Like I remember I was in a 3-year long relationship, और अगर उसमें I hadn't become adventurous in the intimate space, शायद मेरा relationship

0: पूरा जर्सी जानता है, यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: या फिर जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर। हाय, मैं हूँ श्रेया, और क्योंकि मैं एक आरजे हूँ ना, तो मुझे लोगों से बात करने में बहुत मजा आता है। मतलब लोग मुझसे एक्चुअली में आकर के कहते हैं कि बस कर श्रेया, और ज्यादा बातें नहीं। अच्छा, जब आप किसी एक करियर को लेकर के बहुत ही पैशनेट होते हो ना, तो जनरली आप उसी करियर के लिए ट्राई करते हो। लेकिन हमारे एक बॉलीवुड स्टार ऐसे थे जिनके करियर की शुरुआत ऑडिशन से तो हुई, लेकिन कैमरे के आगे नहीं बल्कि माइक के आगे। ये जो लेजेंडरी स्टार थे ना, इनका ड्रीम था कैमरे के आगे आना, लेकिन उससे पहले ये माइक के आगे आए। किसकी बात कर रही हूँ मैं, अभी बताऊंगी। कुछ गानों के उस पार, कम राइट बैक विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अरे देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो चलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ भाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

बाकी बॉलीवुड स्टार्स ने जब अपने करियर की शुरुआत की तो कैमरे के आगे टेक 1 2 3 ये करके ऑडिशन दिया, लेकिन जब इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की तो माइक टेस्ट, हेलो चेक 1 2 ऐसे शुरुआत करी। पुरानी जीन्स पे हाय, दिस इज मी श्रेया। सुनील दत्त साहब की बात कर रही हूँ मैं, जिनका करियर का पहला जॉब जो था ना वो एज एन आरजे था। ही वॉज अ रेडियो जॉकी विद रेडियो सिलोन, और वहां पे काम करते करते ना सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा। ये सपना था एक बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंटरव्यू करने का। वो कौन सी एक्ट्रेस थी और क्या उनका ये ड्रीम पूरा हुआ? भाई मैं सारी चीजें एक बार में तो बताती नहीं हूँ, क्योंकि अगर बता दी तो तुम कहीं और ना चले जाओ, तो इसलिए तुमको ऐसे सस्पेंस में छोड़ के जाने में बहुत मजा आता है मुझे। वापस अब पूरी कहानी बताती हूँ सुनील दत्त साहब की, ओनली ऑन पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा कहते हैं ना कि जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहो तो कायनात साजिश करती है तुम्हें उस चीज से मिलवाने की। पुरानी जीन्स पर हाय, दिस इज मी श्रेया और मैं बात कर रही थी अभी थोड़ी देर पहले सुनील दत्त साहब की, जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत मेरे जैसे करी, यानी आरजे बन करके। ही वॉज एन आरजे विद रेडियो सिलोन, जो उस टाइम का इंडिया का बहुत ही फेमस रेडियो चैनल था। सो यहाँ पे वो बहुत सारे सेलिब्रिटीज को इंटरव्यू किया करते थे, चैट शोज हुआ करते थे। ऐसे में सुनील दत्त साहब ने एक सपना देखा कि काश कभी वो नरगिस जी को इंटरव्यू करें अपने खास शो पे। एंड कैन यू बिलीव कि ये सपना पूरा भी हुआ, नरगिस जी उनके रेडियो स्टेशन पहुंची, लेकिन सुनील दत्त साहब उनका इंटरव्यू नहीं ले पाए। इनफैक्ट उनसे एक शब्द भी नहीं पूछ पाए। क्यों? क्योंकि ही वॉज सो स्ट्रक विद हर ब्यूटी, वो उनकी खूबसूरती को बस देखते और निहारते रह गए और नरगिस जी मुस्कुरा के वहां से चली गई। किसे पता था कि आने वाले सालों में नरगिस जी उन्हीं की वाइफ बनेंगी। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गानों के साथ विद मी श्रेया, और भी करेंगे ना, कम राइट बैक।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा कबड़क कबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

अच्छा मुझे ये बताओ कि 13 साल में 13 years में आप कौन सी क्लास में होते हो? आई थिंक 6th या 7th। और जब आप 23 साल के होते हो तो क्या पढ़ाई कर रहे होते हो? शायद कॉलेज में है ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। सोचो कोई एक्ट्रेस इतनी कमाल कि उन्होंने 13 साल की उम्र में एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया जो कि 23 साल के लड़के की माँ का रोल था। ये एक साउथ इंडियन फिल्म थी, हीरो साउथ इंडिया के मेगा स्टार, और ये हीरोइन पूरे इंडिया की जान। कौन सी हीरोइन थी ये? हाँ, इतनी आसानी से नहीं। गाने सुन करके वापस आओ, फिर बताती हूँ। यू आर लिसनिंग टू श्रेया ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

कहते हैं कि एक्टिंग एज नहीं स्किल देखता है। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। 13 साल की लड़की ने 23 साल के लड़के की माँ का रोल प्ले किया था और ये बात ना कई सालों तक लोगों को नहीं पता चली जब तक श्रीदेवी जी ने खुद ये लोगों को नहीं बताया। एक साउथ इंडियन फिल्म आई थी जिसका नाम था मुंद्रू मुदीचू। इसमें श्रीदेवी जो कि तब सिर्फ 13 ईयर्स की थी, उन्होंने रजनीकांत जी की मम्मी का रोल प्ले किया जो कि उस टाइम पे 23 ईयर ओल्ड थे। और लोगों को ये बात पता भी नहीं चली जब तक खुद ये बात द हवा हवाई गर्ल ने नहीं बताई। एक अच्छे एक्टर के लिए ना एज लिमिट नहीं होती है फॉर द कैरेक्टर्स दे प्ले। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया।

आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रहा।
1: उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद इस जमाने की श्रेया। तो रेखा जी को हम सब बेहतरीन एक्ट्रेस की तरह जानते हैं, पर क्या आपको ये पता है कि रेखा जी ने अपनी फेलो एक्ट्रेसेस को हेल्प करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए उनकी आवाज तक बनी है। जैसे जब मूवी आखिरी रास्ता शूट हुई, श्रीदेवी नई नई थी हिंदी इंडस्ट्री, अमिताभ बच्चन जी के साथ ये फिल्म थी, उनके हिंदी के शब्द इतने क्लियर नहीं थे और तब तक वो बहुत सारी साउथ की फिल्में कर चुकी थी। ऐसे में सिर्फ एक बार रिक्वेस्ट करने पे रेखा जी ने आखिरी रास्ता में श्रीदेवी को अपनी आवाज दी, यानी उनके लिए डबिंग की। याराना फिल्म के लिए नीतू सिंह के लिए अपनी आवाज दी। नीतू सिंह की तब तक शादी हो चुकी थी कपूर खानदान में और मूवी की पूरी शूटिंग खत्म, लेकिन डबिंग रह गई थी। प्रोडक्शन हाउस को भारी नुकसान हो रहा था बिकॉज मूवी कम्प्लीट ही नहीं हो पा रही थी। फिर क्या, रेखा जी ने नीतू सिंह की आवाज बन करके इस फिल्म में भी डबिंग की है। एंड देन शी स्टेप्ड इन फॉर स्मिता पाटिल जी। स्मिता पाटिल जी की मूवी थी वारिस, जिसकी शूटिंग के बाद वो इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे में मूवी शूट हो चुकी थी लेकिन उनकी आवाज नहीं थी। रेखा जी यहाँ पर भी आई और स्मिता पाटिल की इस फिल्म को पूरा किया उनकी आवाज बन करके। पुरानी जीन्स पे मैं हूँ श्रेया। इसी बात पे रेखा जी का एक गाना हो जाए फ्रॉम द फिल्म उमराव जान, सुन करके यहीं वापस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab Mirchi ka.
6: Radio Mirchi. It's hot.
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, हमारी जो उस जमाने की फिल्में होती थी ना, उसमें विलेन्स बहुत पॉपुलर हो जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि विलेन हीरो से ज्यादा फेमस हो जाते थे। अब चाहे वो मिस्टर इंडिया के मोकैम्बो हो, हु बिकेम मोर पॉपुलर देन मिस्टर इंडिया हिमसेल्फ यानी अनिल कपूर, या फिर शोले के गब्बर हो जो कि जय वीरू से ज्यादा लोगों में छा गए थे। तो पहली बार ऐसा हुआ जब ब्रांड्स के एंडोर्समेंट्स की लाइन लग गई थी विलेन के घर पे, यानी अमजद खान जी के घर पे, और उन्होंने एक बिस्किट का ऐड किया जिसकी टैगलाइन पता क्या थी, अगर ये बिस्किट खाओगे तो गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। इंटरेस्टिंग है ना, ना जय की तरह ना वीरू की तरह, लेकिन गब्बर जैसे सॉलिड बनोगे। ऐसी ढेर सारे किस्से कहानियां हैं उस जमाने के, तुम्हारे साथ शेयर करती जाऊंगी। कहीं भी मत जाना, दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

हफ्तों तक लोग लाइन लगा के खड़े होते थे कि शायद इस फिल्म की टिकट सुने मिल जाए। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। लोगों के घर के लोगों की बारियां लगी हुई थी कि आज ये बंदा जा करके घर से खाना पानी लाएगा और दूसरा बंदा लाइन में खड़ा होगा। ये हाल हुआ था जब मुगले आजम रिलीज हुई थी। कहते हैं मुंबई के मराठा मंदिर के आगे तो लोगों में हाथापाई हो गई थी, कर्फ्यू लगने तक की नौबत आ गई थी। पीपल यूज टू स्टैंड इन क्यूज फॉर वीक्स टू गेट द टिकट्स। ऐसी पॉपुलैरिटी किसी फिल्म की इंडिया ने पहले कभी नहीं विटनेस की थी। मुगले आजम की बात कर रही हूँ मैं। इसके टिकट्स भी ना बहुत ही खास तरीके से बिके थे। इसके टिकट्स में एक पूरा डॉकेट होता था, एक फोल्डर रखा गया था। तो अगर आप टिकट खरीदते थे आपको एक फोल्डर भी दिया जाता था। उस फोल्डर में दिलीप साहब और मधुबाला जी की फोटोग्राफ्स थी। नॉट जस्ट दैट, पूरी फिल्म को शूट करते समय जो जो खट्टी मीठी इंसिडेंट्स हुए थे ना वो भी लिखे गए थे। आज जितनी भी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हो जाए, ऐसी यूनिक स्ट्रेटजी उसी जमाने में बना करती थी। लेकिन इस फिल्म ने मधुबाला जी को बहुत सारे घाव दिए थे जिसकी वजह से वो बिस्तर से कई हफ्तों तक नहीं उठ पाई थी। शी वाज बेड रिडन। क्यों हुए थे घाव अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, विद मिर्ची श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स। अब अगर उस जमाने की फिल्म की बात हो रही है तो मुगले आजम की बात नहीं करूं, ये तो गुनाह हो जाएगा मुझसे। आई एम श्योर आपने ये फिल्म देखी होगी, तो वो सीन याद है जिसमें मधुबाला जो है उनको जंजीरों से जकड़ा जाता है। के आसिफ साहब द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, वो हर चीज ऑथेंटिक चाहते थे, हर चीज रियल चाहते थे, तो इसीलिए मधुबाला जी के चेहरे पे वो पेन आए, उन्होंने एक्चुअल जंजीर यानी वो लोहे वाली चेन्स को उन्हें पहनाया था, जिसकी वजह से उनके इतने घाव हुए कि इस सीन को शूट करने के बाद वो कई महीनों तक बिस्तर से उठ नहीं पाई थी। अब ये तो शरीर के घाव थे जो सबको दिख रहे थे, लेकिन दिलीप साहब के होने की वजह से जो दिल के घाव थे उन्हें बहुत कम लोग देख पा रहे थे। इसके बारे में भी बताऊंगी, बस कुछ गानों के उस पार। कम राइट बैक, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: अच्छा आप ये सोच सकते हो कि एक टाइम ऐसा था जब बच्चन जी के साथ कोई हीरोइन काम नहीं करना चाहती थी। हाय, मेरा नाम है श्रेया और आप मुझे सुन रहे हैं पुरानी जीन्स पर। ये हुआ था जब बच्चन साहब की इनिशियल सारी फिल्म्स फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले उन्होंने जितनी की थी ना, सब बॉक्स ऑफिस पे एकदम औंधे मुंह गिरती थी। सो इसी टाइम पे एक फिल्म आई बहुत ही प्यारी जो मुझे बहुत पसंद है, बॉम्बे टू गोवा। अब इस फिल्म के लिए महमूद साहब जो कि ये फिल्म बना रहे थे, उन्हें बच्चन साहब के ऑपोजिट एक हीरोइन चाहिए थी। जितनी भी हीरोइंस को उन्होंने अप्रोच किया, सबने साफ मना कर दिया, हम इस फ्लॉप एक्टर के साथ काम नहीं करेंगे। एक तो उसकी हाइट भी इतनी लंबी है कि हीरोइंस उनके साथ अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में सिर्फ एक हीरोइन थी जिन्होंने हामी भरी, एंड दैट वाज अरुणा ईरानी। अरुणा ईरानी ने इस फिल्म में उनके साथ काम किया। अब यहाँ पे अमिताभ जी ने एक वादा किया, वो वादा कब कैसे कहाँ पूरा हुआ बताऊंगी पूरी कहानी। वापस आओ श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: only on Radio Mercy New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

अरुणा ईरानी ने अमिताभ बच्चन जी के साथ तब काम किया जब कोई और हीरोइन नहीं करना चाहती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और बॉम्बे टू गोवा ये फिल्म बना रहे थे महमूद साहब। इसमें अमिताभ बच्चन को लिया गया। बच्चन साहब की जितनी भी फिल्म्स इससे पहले आई थी सब फ्लॉप हो रही थी। जंजीर से पहले विच एवर फिल्म्स ही वाज डूइंग सब के सब बॉक्स ऑफिस पे फेल हो रही थी। ऐसे में उनके साथ कोई भी हीरोइन नहीं काम करना चाहती थी। एक हीरोइन जिन्होंने हामी भरी वॉज अरुणा ईरानी। अमिताभ बच्चन जी ने अरुणा ईरानी की इस बात को एकदम दिल में बैठा लिया। आपको पता है एक वादा हुआ ऑन द सेट, जब मुस्कुरा के अमिताभ बच्चन जी ने ये कहा कि मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊंगा, तो अरुणा ईरानी ने बच्चन साहब से मुस्कुरा के कहा कि जब भी तुम बहुत बड़े स्टार बन जाओगे ना तो मुझे अपनी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल देना, क्योंकि अरुणा ईरानी वॉज नोन टू प्ले नेगेटिव कैरेक्टर। ये वादा बच्चन साहब ने निभाया भी। अभिमान में डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी से बात करके अरुणा ईरानी को एक छोटा सा ही सही लेकिन पॉजिटिव रोल दिलवा के। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें और गाने श्रेया के साथ चलती रहेंगी, सो डोंट गो एनीवेयर, वापस आओ, आगे बढ़ाते हैं बातें।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
5: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना हिट.

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

पुरानी जीन्स पे आप और श्रेया के साथ जाने का टाइम हो गया है, सो लेट्स हिट द हाईवे। आज का मेरा हाईवे हिट उन सारे हार्टलेस दिलबरों के लिए है जो अपने प्यार करने वाले को ना बहुत तड़पाते हैं। मतलब उनको समझ में आता है कि वो उनके लिए तड़प रहे हैं, लेकिन उन्हें मजा आता है उनको छेड़ने में, उनको तरसाने में, उनको थोड़ा तड़पाने में। ये गाना आज उन्हीं के लिए। श्रेया जाती है, कल मिलने फिर से आती है। इन केस यू मिस मी, यू नो वेयर टू कैच मी, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। फेसबुक पे भी हूँ, इंस्टा पे भी हूँ, डीएम कर देना। बाय बाय।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक 2903-364-7244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Har gana hit, har dusra gana super hit.
4: Only on Radio Mirchi. It's hot.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Tera kya hoga, Kalia?
5: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
4: Ab mirchi kha.
6: Radio Mirchi, it's hot.

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बांटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

0: न्यू जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: तो सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
1: सिस्टर, आज आपसे मुझे बात करना है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो मेरे ख्याल से हम सब के लिए बहुत जरूरी है लेकिन अक्सर होता नहीं है। उसको कहते हैं फॉरगिवनेस, क्षमा कर देना किसी को। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हो रहे थे, एक बार एक फ्रेज जो है वो कई बार सुनने को मिलता है कि फॉरगिवनेस इज अ वीकनेस। कई बार कहते हैं कि उससे वो जो तुम्हारे में वो जो ड्राइव है, पैशन है, रिवेंज कभी कभी आपसे वो काम करवा लेती है जो पीसफुलनेस नहीं करवा पाती है। तो जिन लोगों के लिए दो किलर इंस्टिंक्ट बोला जाता है, जिन लोगों को इस पे बड़ा किया गया है, उसके लिए क्या करें?
2: पहले तो हमें ये चूज करना है कि हमें फॉरगिव करना है कि नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है, देयर सम पीपल वो कहते नहीं, हम तो मरते दम तक भी ये बात नहीं बोलने वाले, इनफैक्ट वो पीछे वालों को भी कहकर जाते हैं कि मेरे मरने के बाद भी उनसे बात नहीं करना, नहीं तो मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी।
1: जी,
2: सो वी हैव दैट कैटेगरी ऑफ पीपल आल्सो, एंड इफ यू आर कंफर्टेबल विद दैट इट इज ओके।
1: ओके,
2: लेकिन देयर आर सम पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल। वो पूछते हैं, वो फॉरगिव करना चाहते हैं, वो फॉरगेट करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपने कोई बात पकड़ के रखी हुई है
1: जी,
2: तो वो किसको तकलीफ दे रही होती है?
1: खुद ही को दे रही होती है।
2: सो व्हेन वी आर फॉरगिविंग, यू नो, बोलने में क्या आता है, मैंने आपको माफ किया, पर एक्चुअली वो सच नहीं होता है। हम किसी को माफ नहीं कर रहे होते, हम खुद को माफ कर रहे होते हैं। आपने मेरे साथ कुछ किया और मैं हर्ट थी, और फिर कुछ समय के बाद मैंने डिसाइड किया, अच्छा ठीक है, मैंने आपको माफ किया। पर ऐसा भी तो हो सकता था ना कि आप तो बोल करके आपको तो फर्क ही नहीं पड़ा था, यू वर टोटली ओके विद इट। एज अ फादर आपको लगा नहीं मुझे तो ये बोलना ही चाहिए था, एज अ टीचर आपको लगा मुझे तो ये बोलना ही चाहिए था, पर आपकी बात को पकड़ा किसने था?
1: मैंने।
2: जैसे अगर कोई स्क्रैच लगाता है और आप उसको स्क्रैच पे स्क्रैच करते जाओ, खरोचते जाओ, तो
1: घाव
2: बन जाएगा, घाव। तो वो घाव कौन बनाता है?
1: मैं ही बनाता हूँ।
2: तो वो घाव हमें फॉरगिवनेस इज उसको हील करना, उस घाव को हील करना। वो कैसे करना है वो अलग चीज है, लेकिन फॉरगिवनेस का मतलब सिर्फ इतना है कि अच्छा, आई एम चूजिंग कि अब इसको और स्क्रैच नहीं करना है।
1: तो ज्यादातर ऐसा क्यों होता है कि फॉरगिव करना सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है एक इंसान के लिए?
2: पहले तो क्योंकि हम फर्स्ट थिंग इज चूज किया कि नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। डिफिकल्ट टास्क इसलिए होता है क्योंकि आपको लगता है कि कोई दूसरा रिस्पॉन्सिबल है उस हर्ट के लिए, इसलिए डिफिकल्ट लगता है। बिकॉज जो अंदर में आप सफरिंग हो रही होती है ना, वो आपको लगता है वो उनकी वजह से है, इसीलिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको लगता है मैं उनको कैसे माफ कर सकता हूँ। बट देन इन बुद्धिज्म आल्सो दे से दैट इट इज लाइक ड्रिंकिंग पॉइजन
1: एंड एक्सपेक्टिंग समबडी एल्स टू
2: डाई
1: I think,
2: but when you're drinking poison, you feel that they are suffering. That is why it is so difficult to let go, क्योंकि you are drinking poison. आप उस दर्द में हैं, पर आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, उसको दर्द हो रहा है।
1: बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत खूबसूरत बात है।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, only on मिर्ची, it's hot.

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Here, it's showing the logical drive letter along with the usable space and file system. I have formatted this in NTFS file system. NTFS file system is always recommended as we can do the logical partitioning of external drive in NTFS. In my next video, we'll explore the easiest way to partition external drive. So, if you have not subscribed my channel yet, please hit the subscribe button to get the latest update and resolve your query in Windows platform.
1: Sadness और anger जैसे complex
0: emotions कैसे handle किया जाए?
1: आइए जानते
0: हैं। Before going into it, नमस्कार, आप सुन रहे हैं निश्चित रिचार्ज मंत्रा
2: मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैंने कुछ लोगों से जब बात की तो उसमें से एक आध चीज जो निकल के आई
0: वो मैं आपको पहुंचा रहा हूँ। कहते हैं कि
3: मैं चाहता हूँ कि तुम्हें भी पता चले कि मुझे कैसा लगा जब तुमने काम किया, इसीलिए मैं फॉरगिव नहीं करना चाहता कि जब तक यू डोंट गो थ्रू व्हाट आई वेंट थ्रू हाउ कैन आई
0: ऑपरेटिंग सिस्टम इज इफेक्टिवली टोल्ड टू वेट अंटिल ऑल प्रोसेसेस यूजिंग दिस ड्राइव हैव फिनिश्ड बिफोर डिसमाउंटिंग द फाइल सिस्टम व्हिच स्टॉप्स एनी फर्दर रीड एंड राइट एक्टिविटीज फॉर द एक्सटर्नल ड्राइव।
3: बिल्कुल हर्ट पीपल कहते ही हैं।
1: उसमें एक हमें सुख मिलता है, उसको सेडिस्टिक प्लेजर बोलते हैं कि जब तक मुझे
0: नाउ लेट्स सेट अ पासवर्ड टू लॉक एंड अनलॉक दिस ड्राइव टू अवॉइड अनऑथराइज्ड एक्सेस।
1: थोड़े से दुख से समझो किसी ने आपके साथ कुछ किया, आपको सैडनेस से बिगिन होता है।
0: नाउ आई हैव टू एंटर 8 डिजिट सिक्योर कोड दैट केम अलोंग विद दिस ड्राइव। आई हैड ऑलरेडी शोन ऑल द पेपर्स एंड 3 सब्सक्रिप्शंस दैट केम अलोंग विद दिस ड्राइव इन माय लास्ट अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू वीडियो। जस्ट चेक दैट आउट।
1: आप उदास हैं पर आपने अपने को हील नहीं किया,
3: राइट,
1: या किसी ने आपको हील नहीं किया या आपने अपने को हील नहीं किया, तो वो धीरे धीरे गुस्से में बदल जाएगा,
3: राइट।
1: फिर वो गुस्सा धीरे धीरे नफरत में बदल जाएगा।
0: नाउ आई विल क्रिएट अ पासवर्ड टू अनलॉक दिस ड्राइव ऑन एनी कंप्यूटर
1: कि रिवेंज लेने के बाद
0: पासवर्ड हिंट है,
1: मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और एक बार ही आपको लगेगा भी हल्का सा
0: कि आपने वो सारी नेगेटिव एनर्जी क्या करी है, रिलीज कर दी। फॉरगेट आवर पासवर्ड, वी कैन रीसेट इट। वी मस्ट हैव अ फ्री सीगेट अकाउंट टू क्रिएट अ रीसेट की। इफ यू डोंट हैव, यू कैन सेट अन अकाउंट फ्रॉम
3: माय थी। उसमें वरुण धवन wants to avenge
0: internet
3: the death of his wife,
0: required to set up a
3: secret account. Murderer hai aur wo unko jail mein milne jaate hain.
4: Edit stick, two jobs, one stick, with a brightener on one end and hydrating concealer on the other. It conceals dark circles and brightens tired looking eyes without feeling heavy or
3: cakey. तो बहुत खूबसूरत बात कही कि ज्यादातर हमको लगता है रिवेंज लेने के बाद हमें अच्छा महसूस होगा, कुछ क्षणों के लिए शायद महसूस होगा, लेकिन जिस तरह के इंसान हम बन जाते हैं शायद हम अपने आप को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते।
0: इट्स स्किप दिस पोर्शन। इट्स हाईली रिकमेंडेड टू क्रिएट अ सीगेट आईडी एज इफ यू डोंट हैव दिस इट्स हार्ड टू रिकवर योर अनलॉक पासवर्ड इन केस यू फॉरगेट इट। सेम वार्निंग इज शोन हियर। लेट्स चेक दिस एंड नेक्स्ट।
5: Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari and here Sister it's Shriya. Only on Mirchi. It's hot.
0: Now we can lock this drive from here. Tribunakaram. Let's eject this drive and reconnect it to check. Here you can see secure drive lock. We can unlock it from here. Let's put the password. And it's unlocked now. And

0: Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Forgiveness weakness नहीं, एक powerful sign है. आइए इसे समझें.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: कहा गया कि an eye for an eye will make the entire world blind, तो ये करना बेहतर नहीं है.
4: गांधी जी तो ऐसा कहते ही थे और हम ये सुनते भी थे, बट अगेन इसमें फिर वो क्या कहते थे कि लव इज फॉर somebody who is a powerful soul, it is not a quality of weak. जो लव है, लव एंड फॉरगिवनेस जो है, वो क्वालिटी वीक की नहीं है. वो क्वालिटी एक बहुत स्ट्रांग व्यक्ति की है.
3: क्या बात?
4: एक स्टोरी, ये रियल स्टोरी है. एक मदर थी जिसका बेटा कुछ खरीदने के लिए बाहर गया था, 18-19 ईयर ओल्ड, और वो जब खरीद करके वापस आ रहा था तो तीन जने ने उसको अटैक किया.
3: अच्छा.
4: चोरी भी कर लिया, सब सामान चोरी भी कर लिया, बहुत ब्रूटली उसके साथ मिसबिहेव किया, मारा, उसको हॉस्पिटल लेकर के गए. इंजरीज जो थी वो बहुत सीरियस थी, वो मर गया.
3: अच्छा.
4: बच्चा मुश्किल से 20 इयर्स ओल्ड होगा, और जिन्होंने अटैक किया था उसमें से तो एक माइनर था, वो तीन जने थे उसमें से एक माइनर था. और कोर्ट का ये कि मतलब पकड़ा गया, वो केस चल रहा था, और वो मदर के पास उस समय ऑप्शन तो है ही ना. मैंने आप कहेंगे तो नेचुरल है कि कोई भी मदर को बहुत गुस्सा भी आएगा, उस बच्चे से बहुत नफरत भी होगी. पर उस मदर ने सबके सामने, एंड दिस इज़ अ वेरी समथिंग दैट यू कैन फाइंड ऑन सोशल मीडिया, उसने सबके सामने कहा, हर दिन अल्लाह हमें रहम करना सिखाता है. हम सब इमेजिन नहीं करते कि ये सीन हमारे सामने आ जाएंगे, पर हर रोज जब हम अपने धर्म में जाते हैं या पढ़ते हैं तो अल्लाह हमें हर रोज रहम करना सिखाता है, क्षमा करना सिखाता है. और इसीलिए आज मैं आपसे नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि नफरत करने से मेरा बेटा तो वापस नहीं आ जाएगा. और न ही नफरत करने से कोई आपके जीवन बनेगी. और आप जो भी जीवन चूज करोगे उसका प्रभाव सोसाइटी पर पड़ने वाला है, बिकॉज यू आर नॉट एन इंडिविजुअल, यू आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी. इसलिए आई चूज टू बी पार्ट ऑफ योर लाइफ, सो दैट इफ यू इम्प्रूव द सोसाइटी विल इम्प्रूव.
3: वाह, क्या बात है.
4: अगेन इट टेक्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. हम में से सब कहेंगे नहीं, ऑर्डिनरी है, गुस्सा तो आएगा, नफरत तो आएगा, पर वहीं पर एक सिचुएशन है, रियल लाइफ सिचुएशन है. एंड देन जब जब, क्योंकि वो माइनर था, कोई उसके आगे पीछे था नहीं, दैट वुमेन टुक अप दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एवरी मंथ जब मिलने का वो पीरियड होता था, वो जाकर के उसको मिलती थी. बट ये कितनी पावर की निशानी है उस समय. और फिर जब वो रिलीज हुआ, जब आई थिंक वो जो प्रिजनमेंट थी वो कोई 10-15 साल की थी, क्योंकि मर्डर था, माइनर था इसलिए इतनी थी, शायद ज्यादा भी होती. बाहर जो होना था वो सब कुछ हुआ. और होता ही है, फॉलो करना भी पड़ता है, चाहे वो हमारे लॉज हैं, चाहे वो पनिशमेंट है. लेकिन अंदर हमारे पास हमेशा एक ऑप्शन होता है कि इतने बड़े सीन के बाद भी अब मुझे उस चीज को पकड़ के रखना है, उसको रिपीट करना है, बिटर बन जाना है. और हम कहेंगे पर ये नेचुरल है ना, हम कह सकते हैं ये नेचुरल है. वो मदर बिटर हो सकती है और वो ऐसे ही मर भी सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है. लेकिन उसके पास वो ऑप्शन भी था, जब उसने कहा कि नफरत मेरे बेटे को तो वापस लेकर नहीं आएगा. एंड अनदर थिंग शी सेड, कहीं ना कहीं उसकी डेथ भी प्रीडेस्टिन्ड थी, क्योंकि डेथ बर्थ डेस्टिन्ड होती है, और शायद उसका पर्पस था आपकी जीवन बनाना.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मन में रिवेंज रखने का सबसे ज्यादा नुकसान हमें ही होता है, आइए इसे समझते हैं।
3: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
4: ये बहुत खूबसूरत कहानी है और बहुत प्रेरणा देती है जब हम सुनते हैं ऐसी कहानियां, और फिर हमको बहुत इससे इम्प्रेशन भी होता है। इससे मेरा एक सवाल है जो मैं किसी से बात कर रहा था, वो कहते हैं कि यार फॉरगिव करने से क्या होता है, ऐसा लगता है कि वो छूट गए, उनको उसकी सजा नहीं मिली और उनको वो गलती का एहसास नहीं हुआ जो उनको होना चाहिए था। तो आपने अभी भी जो बताया, जो वाक्य बताया, उसमें एक पहलू ये है कि माफ कर दें और कहते हैं कि अल्लाह हमेशा कहते हैं कि रहम करो, और दूसरा है कि कुछ लोगों में भावना होती है कि ये तो गलत किया ना उन्होंने, उसकी सजा तो उसकी मिलनी चाहिए, सो आई कांट फॉरगिव देम क्योंकि फिर वो छूट जाएंगे। यार
5: सजा दे देना जो देनी है सजा दे दे, सजा देने में हर्जा नहीं है। अगर आपको लगता है किसी ने कुछ गलत किया है, अगर उसके कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेने में गलत नहीं होता, बाहर का अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं या सजा ले रहे हैं, लॉज बने ही इसलिए होते हैं, आप अगर किसी को पनिश भी करते हैं तो वो भी गलत नहीं होता, पर आप क्या कह रहे हैं कि मैं उसको माफ नहीं कर सकता। ठीक है, जब हम कह रहे हैं हम उसको माफ नहीं कर सकता का मतलब क्या है?
4: मतलब क्या है कि मैं उसे कभी भूल नहीं सकता।
5: मैं उसको कभी भूल नहीं सकता। किसको भूल नहीं सकता?
4: जो उसने मेरे साथ किया,
5: जो उसने मेरे साथ किया था, तो मैं उसको भूल नहीं सकता, तो मैं उस चीज को क्या करूंगा?
4: दिमाग में बैठा के रखूंगा।
5: दिमाग में बैठा के रखूंगा तो किसका दिमाग खराब होगा?
4: मेरा ही होगा।
5: तो फॉरगिवनेस का मतलब क्या है?
4: कि पहले उसको दिमाग से हटाओ।
5: उसको दिमाग से हटाओ। उसका मतलब ये नहीं है, फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आपका बिहेवियर राइट था। आप गलत समझ रहे हैं। मैं आपको फॉरगिव कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जो किया था, अगर उस मदर ने उस बच्चे को फॉरगिव किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस बच्चे ने जो किया था वो राइट था। वो तो 100% रॉन्ग था,
4: बहुत बड़ी,
5: और उसकी सजा भी उसको मिली, पर उसका पर्पस इतना था कि हम उस चीज को लेकर के अब अपना जीवन थोड़ी ना खराब करेंगे। तो हम समझते हैं फॉरगिवनेस, इसलिए हमने जो पहले कहा ना, हम फॉरगिवनेस को क्या कहते हैं कि आपको हम फॉरगिव नहीं करेंगे, पर एक्चुअली हम किसको फॉरगिव नहीं कर रहे होते हैं?
4: अपने आप को।
5: क्योंकि पकड़ के तो हमने रखा है ना, जैसे आप देखे ये बॉटल है, ये मैंने पकड़ी हुई है, ये कितने ग्राम की है?
4: 10 ग्राम 20 ग्राम 100 ग्राम की।
5: चलो 100 ग्राम की है, अगर ये 100 ग्राम की बॉटल मुझे पकड़ के रखनी है तो मुझे ये हल्की लगेगी।
4: बिल्कुल,
5: है ना, अभी पकड़ी हुई हल्की लगेगी, लेकिन अगर 1 घंटा ऐसे पकड़ के रखनी पड़े
4: तो फिर दर्द होने लगेगा हाथ में, हथेली पे।
5: किसको दर्द होने लगेगा?
4: हथेली को,
5: जिसने पकड़ के रखा है।
4: हाँ।
5: बॉटल को कुछ नहीं हो रहा।
4: हाँ। बहुत सही बात है,
5: बॉटल को कुछ नहीं हो रहा, हाथ को दर्द होगा, और एक दिन पकड़ के रखना पड़ेगा,
4: पैरालाइज हो जाएगा,
5: 1 महीने में तो हो ही जाएगा।
4: सही,
5: तो जिसने पकड़ा है उसका नुकसान होता है, बॉटल का नुकसान नहीं हो रहा है, पकड़ने वाले का नुकसान हो रहा है। छोड़ना है कि नहीं वो चॉइस है।
1: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची 89.4।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: Resentment को पकड़े रखना सिर्फ हमारी एनर्जी को हैवी बनाता है. आइए समझते हैं कि इसे छोड़ना क्यों जरूरी है.
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया.
3: आपने बहुत अच्छी बात कही कि जरूरी नहीं है कि उसने जो किया वो सही है. तो फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं होता कि हम ये कहें कि जो उसने कही किया वो सही है. तो ये बहुत ज़रूरी है डिस्टिंक्शन कि फॉरगिव करना मतलब ये कि तुमने जो किया वो गलत है, मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन आई चूज टू फॉरगिव यू, बहुत ज़रूरी है.
4: यस यस एब्सोल्युटली. फॉरगिवनेस का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि सामने वाले ने जो किया है वो राइट है. सामने वाले ने झूठ बोला हो सकता है, सामने वाले ने चीट किया हो सकता है, सामने वाले ने कुछ भी किया हो सकता है. तो वो समझना कि वो गलत है वो तो समझना ही है ना.
3: क्या बात,
4: सही को सही समझना है, गलत को गलत समझना है. समझो भले, उसमें प्रॉब्लम नहीं है. यू अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट, यू अंडरस्टैंड व्हाट इज रॉन्ग, बट नाउ डोंट मेक इट. आप उसको ले करके अंदर में हर्ट हो और बिटर हो और उसको पकड़ के रखो, वो चॉइस है. वो हमें करना है, या अगर हमें किसी को सुधारना भी है तो हम कैसे उसको सुधार सकते हैं? अगर हम ही अंदर से इतने दर्द में होंगे तो हम कैसे उनको किसी भी प्रकार का सपोर्ट दे सकते हैं?
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया. ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फॉरगिवनेस का काम है आपको ओवरथिंकिंग से आजाद करना, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सारा मोंटाना बोल के एक लेडी है, टेडेक्स में आई थी, वो बहुत खूबसूरत सी उन्होंने एक स्पीच दी और उनकी स्पीच मैं सुन रहा था, तो वो कहती हैं कि फॉरगिवनेस इज डिजाइन टू सेट यू फ्री। व्हेन आई से आई फॉरगिव यू एंड आई कोट, व्हाट यू आर रियली सेइंग इज आई नो व्हाट यू डिड, मैं जानती हूँ तुमने क्या किया, इट्स नॉट ओके, मैं बिल्कुल ओके नहीं हूँ तुमने जो किया उससे, बट आई रिकग्नाइज दैट यू आर मोर देन दैट। जो आपने थोड़ी देर पहले उस बच्चे के बारे में भी और माँ के बारे में भी जो कहानी सुनाई, आई रिकग्नाइज दैट यू आर मोर देन दैट, आई डोंट वॉन्ट टू होल्ड अस कैप्टिव टू दिस एनी मोर, आई कैन हील माई सेल्फ एंड आई डोंट नीड एनी थिंग फ्रॉम यू, तुमसे मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है।
4: This is so beautiful.
3: बहुत खूबसूरत, मुझे बहुत प्यारा लगा।
4: Just reading it can make you feel so freeing.
3: Yes.
4: Because you know we always want to shift the blame, na?
3: जो उनके
4: जो last line थे कि I don't want anything
3: from you.
4: From you. मना I don't want कि अगर आप ऐसे ही behave करेंगे then only I will be okay. Otherwise I will be hurt and I will not forgive you.
3: तो उनकी जो शुरुआत वाली लाइन है फॉरगिवनेस इज डिजाइन टू सेट यू फ्री, इसलिए तुम शायद फॉरगिव करना सीखो, क्योंकि आपने कहा ना कि वो दिमाग में अगर लेके बैठे रहे हम तो हम ही परेशान होते हैं, एक बोतल को लेके अगर हम खड़े रहे तो हमारा ही हमको ही दर्द होगा, हम ही दर्द में जाएंगे, तो इट्स बेटर टू फॉरगिव, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट टू फॉरगेट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज जो मुझे समझ में आया कि फॉरगिवनेस और फॉरगेटफुलनेस दो अलग चीजें हैं।
4: फॉरगेट तो बहुत होता भी नहीं है एक्चुअली। फॉरगेट क्या होता है, फॉरगेट का मतलब सिर्फ ये होता है कि वो चीज़ अभी आपके अंदर जो पहले इतना पेन क्रिएट कर रही थी वो नहीं कर रही होती। बाकी समझो जैसे आपको कोई स्कार होता है तो स्कार को देख करके आपको कई बार सारी स्टोरी याद आ जाती है,
3: बिल्कुल
4: ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, लेकिन वो स्कार आपको अब कोई और दुख नहीं दे रहा है, हर्ट नहीं कर रहा है। तो एक्चुअली में जो आपके साथ हुआ होता है आप ऐसे नहीं उसको भूल सकते,
3: बिल्कुल,
4: लेकिन अब जब आप उसको याद करते हो वो आपको अंदर में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट कर रहा होता, आपको अनकंफर्टेबल नहीं फील करा रहा होता, आप बहुत कंफर्टेबली किसी के साथ शेयर भी कर पाते हैं और आप ये भी बता देते हैं व्हाट आई लर्न्ड फ्रॉम दिस।
3: ये बहुत बहुत अच्छी बात,
4: तो वो आपके लिए एक एक्सपीरियंस बन जाता है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है

आई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फॉरगिव एंड फॉरगेट, इसका सही मतलब क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: बट एक चीज बताइए कि हम किसी को फॉरगिव कर सकते हैं विदाउट फॉरगेटिंग, जो आपने कहा उस इंसान ने क्या किया वो जरूरी है, क्योंकि हम सेल्फ प्रोटेक्शन फिर नहीं कर पाएंगे, वरना हम बार बार उसी ट्रैप में फंसते रहेंगे।
4: इसीलिए तो हमने कहा ना, हम फॉरगेट तो कर ही नहीं सकते।
3: हाँ,
4: वो तो रहता ही है, लेकिन वो चीज अभी सिर्फ मुझे पेन नहीं क्रिएट कर रही है।
3: एग्जैक्टली, तो अब हम सीख रहे हैं कि उससे क्या हुआ और आगे ना हो, इसके लिए हम अपनी जिंदगी आगे।
4: हाँ, बाकी कैसे, जो चीज आपके साथ हो गई वो एक्चुअली डिलीट तो होती नहीं है, फोन से डिलीट हो सकती है।
3: सही बात है,
4: कोई भी चीज है आपके फोन से आप उसको डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार ही वो इम्प्रेशन अंदर चला गया वो डिलीट नहीं हो सकता।
3: बहुत बढ़िया,
4: वो इतना हो सकता है कि उस चीज को सोच करके आप बहुत रोने से भी लग जाते हैं, नहीं होते ना, वो बात भी आई, किसी ने उस चीज का जिक्र भी किया,
3: उससे भी दर्द आ गया।
4: और एक बात हो रही है, आप खुद ही शेयर कर रहे हैं। कई लोग आप देखेंगे वो अपने एक्सपीरियंसेस प्लेटफॉर्म पर जाकर के शेयर कर रहे होते हैं।
3: बिल्कुल,
4: कोई ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जिसमें वो सदा के ट्रॉमा में भी हो सकते हैं, जैसे ये वेमेन है, बट वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही है जो औरों को भी इंस्पायर कर रहे हैं कि ये पॉसिबिलिटी है, ये चॉइस है, सो दैट इज नॉट क्रिएटिंग दैट काइंड ऑफ यू नो डिस्टर्बेंस विद इन यू एनीमोर।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning, my desi people. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए मिर्ची मॉर्निंग्स विच हैज ऑफिशियली बिगन। या फिर सफे में किसी के शोल्डर पे एक्सीडेंटली हार्ड रेस्ट बना रहे हो या किचन में परौंठे सेकते सेकते लाइफ के डिसीजंस रीथिंक कर रहे हो, आई हैव गॉट यू एंड आई हैव गॉट यू फॉर अ फ्यू आवर्स फ्रॉम नाउ बिकॉज मॉर्निंग्स आर बेसिकली लाइक मसाला डोसा। जितना बाहर से क्रिस्पी होगा उतना ही अंदर से स्टफी होगा। और स्टफ करने के लिए मेरे पास है बॉलीवुड के गाने, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा रोमांस, थोड़ा सा कंफ्यूजन। नो कंफ्यूजन एट ऑल। सुबह सुबह मिर्ची पर एकदम क्लियर एंड क्रिस्पी होती है, तो वॉल्यूम को, मूड को, स्माइल को चढ़ा लो, अपने दिन को मिर्चीदार बना लो। आज का मिशन है नो टेंशन एट ऑल, गुड म्यूजिक, गुड वाइब्स एंड बहुत सारी बातों के साथ आ चुका है मिर्ची मॉर्निंग्स टू मिर्चीफाई योर डे विद मी प्रिसिला। फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम और एक्स पर भी फॉलो कर लो। मेरे पास एक कॉन्टेस्ट भी है तुम्हारे लिए, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर अगर कॉन्टेक्ट करना है तो 9033 मिर्ची, दैट्स माई नंबर, 9033647244। अभी के लिए मिर्ची दैट बैंगर्स कमिंग अप योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स पर वेदर चेक। बिकॉज आउटफिट चूज करने से पहले वेदर का मूड समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना हम देसी पीपल का स्वैग ही खत्म हो जाता है। राइट नाउ वी आर सिटिंग एट अ सनी 62 डिग्रीज फारेनहाइट, बट फील्स मोर लाइक 64 डिग्रीज फारेनहाइट, यानी कि वेदर जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर बोनस में दे रहा है। आज का टेम्परेचर रेंज देख लेते हैं, 62 से लेकर 83 डिग्रीज फारेनहाइट के बीच में फ्लक्चुएट करेगा, विद द फील्स लाइक टेम्परेचर गोइंग फ्रॉम 60 to 85 degrees Fahrenheit. और रेन के 0 मिलीमीटर्स के चांसेस हैं, जस्ट लाइक इन द लास्ट 24 आवर्स 0 मिलीमीटर्स इज एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट 24 आवर्स एज वेल। अराउंड 4 से 5 बजे शाम को पार्टली क्लाउडी स्काइज होने वाला है, एंड बाय 5 PM मोस्टली क्लाउडी कंडीशंस हो जाएंगी। हाई आज जाने वाला है 83 डिग्रीज फारेनहाइट तक, ऑलमोस्ट सिमिलर टू यस्टरडे। कल का टेम्परेचर मैक्स आउट हुआ था 79 डिग्रीज फारेनहाइट पर। और वेदर के साथ साथ एक और इंपॉर्टेंट जानकारी लेते जाओ, मिर्ची करेगा बंधन पूरा चल रहा है टेस्ट मिर्ची पर, ब्रॉट यू बाय नानक फूड्स, ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ, जिसमें तुम जीत सकते हो नानक फूड्स की तरफ से अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स। और अगर जीतना चाहते हो तो फटाफट से अभी के भी व्हाट्सएप खोलो, टाइप करो RAKHI राखी एंड सेंड इट टू 9033 मिर्ची, यानी कि 9033647244। तो मुझे DM भी कर सकते हो इंस्टा पर और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं वहां पर 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी पर, विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com पर। एंड व्हाइल यू आर रजिस्टरिंग फॉर द कॉन्टेस्ट, लेट मी प्ले सम मिर्चीदार बैंगर्स फॉर यू ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: दिस इज समथिंग

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Time for updates from around the world with me, Priscilla, only on Mirchi Mornings. सबसे पहले द स्टेट डिपार्टमेंट हैज टेम्पररली पॉज इमिग्रेशन वीजा

0: Milci.
1: Iskabala, uskabala, sakabala. Rabala. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी.
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी.
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं,
3: क्या यूज करो. आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की.
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च जला ली ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना, तभी तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो, गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप.
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है, मैं मेरे पास कर रहा हूँ. मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स। और बॉलीवुड से आ रही है काफी इंटरेस्टिंग थिएटर अपडेट्स। यश स्टार और टॉक्सिक के मेकर्स ने ग्लोबली थिएटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया है कि साउंड जो है 5.0 से नीचे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वाई? फिल्म का फाइनल साउंड मिक्स एक स्पेसिफिक डॉल्बी प्रोसेसर सेटिंग पर क्रिएट किया गया है और मेकर्स का कहना है कि अगर वॉल्यूम 5.0 से नीचे गया तो डायलॉग की क्लैरिटी इफेक्ट हो सकती है। मतलब कि थिएटर वालों को बेसिकली बोला गया है वॉल्यूम कम किया तो डायलॉग तुमसे नाराज हो जाएगा। ऑफ कोर्स फिल्म को अभी तक रिव्यूज काफी मिक्स टू नेगेटिव मिले हैं, लेकिन अगर तुम मूवी देखने जा रहे हो एटलीस्ट डायलॉग क्लियरली सुनाई देने चाहिए, वरना ऐसे लोग जो पास में बैठते हैं ना पूछते रहते क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, वैसे लोगों के साथ बड़ा इरिटेशन होने लगेगा। और वैसे भी नेगेटिव पब्लिसिटी से कहां कोई मूवी फ्लॉप हुई है बॉलीवुड में, फॉर एग्जाम्पल कबीर सिंह एंड एनिमल। और अब बॉलीवुड हीरो से चलते हैं हीरो की तरफ। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, जहां पर तुम्हें मिल रहा है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड डायमंड की मेकिंग charges. And if you've got old gold sitting in your drawer somewhere doing absolutely nothing, maybe it's time to give it a Bollywood level ka makeover. Lekar jao Tanishq par, exchange karao 0% deduction par. Of course terms and conditions are applied. Main hoon Prisala tumhare saath mein, follow karo mujhe Instagram aur X par, mera handle hai Mirchi Priz, that is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi, that's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा।
2: अभी मेरे साथ में कौन है लाइन पर? लेट्स फाइंड आउट। हेलो,
3: हाय, माय नेम इज संध्या, हाउ आर यू प्रिसिला?
2: हाय संध्या, आई एम गुड, हैप्पी राखी टू यू संध्या।
3: हैप्पी राखी टू यू टू। माय ब्रदर इज नॉट हियर बट ही वाज हियर अ मंथ बिफोर एंड वी हैड अ गुड टाइम, दैट आई एम ब्लेस्ड फॉर दैट। या बट फॉर माय मेमोरीज फ्रॉम चाइल्डहुड इज लाइक माय बुआ यूज्ड टू कम, माय सिस्टर ओल्डर सिस्टर्स यूज्ड टू कम एंड यू नो वी ऑल यूज्ड टू कम टुगेदर लाइक You know, like we used to sit together and put rakhis on my brother. Hmm. And then we used to get like, you know, all those karare karare note. They used to get from bank. We used to eat those ghevar.
2: Aur abhi kaise change ho gaya rakhi ka festival aapke liye?
3: Well, abhi to sirf we just order online and then they get it and then they, you know, video call and then we just, you know, just say happy rakhi to them. So yeah, we miss those days. Yeah.
2: Okay. And that's kind of the sad reality of life. कि अभी बहुत सारे भाई बहन दूर दूर रहते हैं तो राखी उस तरह से नहीं मना पाते जैसे इंडिया में मनाते थे।
3: एग्जैक्टली, या वी हैव यू नो वी हैव वी इंडियंस एंड वी मेक रिलेशंस सो क्विकली यू नो विद सो वी मेड सम ब्रदर ओवर हियर टू एंड वी डू सेलिब्रेट विद देम।
1: प्रेजेंटेड बाय नानक फूड ब्रिंगिंग स्वीटनेस टू योर लाइफ इन एसोसिएशन विद विरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड। फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स ऑन 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। विजिट विरानी ज्वेलर्स.com।

0: भी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: चलो पता करते हैं गोल्ड का क्या हाल चाल है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स।
2: rajjewels.com विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग एंड हैप्पी ओनम टू ऑल। जितने दोस्त हमारे ओनम सेलिब्रेट करते हैं उनको ओनम की बहुत बहुत शुभकामनाएं rajjewels की टीम के साथ। आज गोल्ड फॉर 620 4,620 डॉलर पट रहे हैं और स्ट्रेट कर रहा है। और जैसा ओनम के दिन हम चाहते हैं कि अपने लव्ड वंस के लिए कोई खूबसूरत सा तोहफा लेके जाएं, राज ज्वेल्स के पास 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी एंड 18 कैरेट कलर्स डायमंड ज्वेलरी, खूबसूरत से खूबसूरत डिजाइन एंड वेरी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस। ट्रांसपेरेंसी के साथ आप समझ सकते हैं कि कितने परसेंट ऑफ गोल्ड के चार्ज पे आप मेकिंग पे कर रहे हैं एंड शिप करा सकते हैं टू एनी लव्ड वंस विद इन यूनाइटेड स्टेट्स। आइए rajjewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी ओनम टू ऑल।
1: एंड देयर यू गो, गोल्ड का अपडेटेड रेट सुना तुमने एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मेरा नाम है प्रिसिला, कनेक्ट विद मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइस, मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड इट्स टाइम फॉर योर डेली डोज ऑफ अपडेट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। सबसे पहले न्यूयॉर्क मेयर ज़ोरान ममदानी वॉज आस्क्ड अबाउट एन आरएसएस चीफ मोहन भागवत इवेंट एट मैडिसन स्क्वायर गार्डन। ममदानी सेड ही डजंट सपोर्ट द रैली बट क्वेश्चन्ड वेदर द सिटी हैज द ज्यूरिसडिक्शन टू कैंसिल अ प्राइवेट इवेंट। ही ऑल्सो स्पोक अबाउट हिज फैमिलीज कनेक्शन टू इंडिया एंड द सेक्युलर रिपब्लिक ही वॉज टॉट अबाउट। नंबर टू पर अ ज्वेलरी ब्रांड हैज विथड्रॉन इट्स रक्षाबंधन एड फीचरिंग कृति सैनन आफ्टर बैकलैश ओवर हर आउटफिट एंड अ सीन वेयर शी टाइज अ राखी टू a dog. The brand said it respects Indian culture and didn't intend to hurt sentiments. Kriti defended the ad saying culture and tradition are in a woman's heart, not in her neckline. And lastly, OpenAI CEO Sam Altman reportedly commissioned just 7 custom watches featuring the OpenAI logo, the words compute is destiny, and even a Python inscription on the back. And the price? The model starts around $180,000. And that's it for Mirchi Hour Ka 3 for this hour. Main hoon Priscilla tumhare saath mein. Follow me Instagram and X par. Mera handle hai Mirchi Pris. That is MIRCHIPRIS. WhatsApp ka number 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्री मॉल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
2: जी बताइए,
4: नाम क्या है?
3: संतोष. संतोष.
2: संतोष.
3: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं, कोई बात नहीं.
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
3: डू? I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो. God bless you. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस क्या?
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: नानक फूड प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा.
2: हमारे साथ हमारी अगली कॉलर है लाइन पर. हेलो.
3: हाय.
2: व्हाट्स योर नेम?
3: शीतल.
2: हाय शीतल, हाउ आर यू?
3: गुड.
2: शीतल, हैप्पी राखी टू यू.
3: सेम टू यू.
2: क्या चल रहा है? राखी की तैयारी कैसे चल रही है?
3: बहुत अच्छे से चल रही है. राखी के दिन हम सभी भाई और सिस्टर जाने वाले हैं मेरे भैया के घर फ्राइडे को ही. इस बार हम फ्राइडे को ही जाने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट डे सैटरडे है. तो
2: ग्रेट. कौन कौन होने वाला है? उनके नाम बताइए. उनको कुछ मैसेज देना चाहते हो आप?
3: मेरा भाई अभी स्टोर पे है. मैं उसको बोलना चाहती हूँ हैप्पी रक्षाबंधन. सो बड़ी दीदी है वर्षा दीदी, छोटी दीदी है नैना दीदी, बहन का दो बेटी है वो अमी कृष्णा, और उसके हस्बैंड और उसके भी दो बच्चे हैं वो भी आने वाले हैं. दूसरी सिस्टर है उसके भी तीन बच्चे है, तो दो ब्रदर है बेटे है और एक बेटी है. हर साल हम लोग राखी की थाली को सजाते हैं और भाई की आरती करते हैं और एक दूसरे को मिठाई खिलाते हैं और फिर अच्छा सा खाना हम लोग मेरी मम्मी लोग बनाते हैं, फिर सभी लोग एंजॉय करते हैं. और लेकिन मेरा भाई छोटा था है वो तो बहुत नटखट है.
1: Presented by Nanak Food, bringing sweetness to your life in association with Virani Jewelers on Oak Tree Road. Festive special offers on 22 karat gold and diamond jewelry. Visit viranijewelers.com.

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Funfest on September 27th at Bala Banquet.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और आप सुनने वाले हो आज का राशि जोन.
2: मिर्ची राशि जोन
1: इरेज यानी कि मेष राशि. वर्क रूटीन में आज प्रोग्रेस दिखाई देगी. छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आए तो स्माइल रखो बरकरार, बिकॉज अपेरेंटली स्माइल इज फ्री. लकी कलर फॉर यू इज क्रिमजन. लकी नंबर इज 14. टॉरस यानी कि वृषभ राशि. जुपिटर और मून ऑप्टिमिज्म का बूस्ट दे रहे हैं. बस अनवांटेड थॉट्स को माइंड में परमानेंट एयरबीएनबी में मत डाल दो. रिलैक्स करो, ब्रीथ करो, मूव ऑन करो. लकी कलर इज मिंट ग्रीन. लकी नंबर इज 6. जेमिनी यानी मिथुन राशि, आज थोड़ा सा कॉशन रखना. डिस्ट्रैक्शन, छोटी मिस्टेक्स या वर्क आउट ला सकते हैं. मल्टीटास्किंग के चक्कर में 17 टैब्स ओपन मत कर देना ब्रेन में. लकी कलर इज स्काई ब्लू. लकी नंबर इज 21. कैंसर यानी कर्क राशि, यू आर अंडर अ लकी स्पेल ऑफ होप एंड वार्मथ. कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग रहेगी और एक सिंपल जेस्चर भी स्पेशल मेमोरी बन सकता है. लकी कलर इज पर्ल व्हाइट. लकी नंबर इज 9. लियो यानी कि सिंह राशि, करिश्मा फुल वॉल्यूम पे है. सोशल और प्रोफेशनल सिचुएशन में सक्सेस मिल सकती है, बट अपने फेवरेट लोगों के लिए टाइम निकालना जरूरी है. सिर्फ इंस्टाग्राम स्टोरी रिप्लाई करना इनफ नहीं होगा. लकी कलर इज मैरी गोल्ड. लकी नंबर इज 3. वगो यानी कन्या राशि, लर्निंग फोकस और कोलैबोरेशन के लिए आज का डे की है. सक्सेस आज लक से नहीं, कंसंट्रेटेड एफर्ट्स और टाइमली डिसीजन से मिलेगी. सो ओवरथिंकिंग को मीटिंग से पोलाइटली बाहर भेजो. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 18. लिब्रो यानी कि तुला राशि, मेंटल स्ट्रेस फाइनली थोड़ा सा हल्का होगा. वार्म कन्वर्सेशंस एंड गुड कंपनी ब्रिंग जेन्युइन जॉय. आज किसी अपने के साथ चाय और गॉसिप साइंटिफिकली नहीं बल्कि स्पिरिचुअली रिकमेंडेड. लकी कलर इज पीच. लकी नंबर इज 11. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, फ्रेंड्स कीप योर स्पिरिट्स हाई एंड स्मार्ट आइडियाज को आज फाइनेंशियल गेन में टर्न करने का चांस है, स्पेशली थ्रू स्टेडी टीम वर्क. सोलो हीरो बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है. लकी कलर इज बर्गंडी. लकी नंबर इज 27. सैजिटेरियस यानी धनु राशि, फैमिली या किड्स के साथ क्वालिटी टाइम स्ट्रेस मेल्ट करेगा, लेकिन प्लीज रशिंग से बचना. आज थोड़ा एक्सीडेंट प्रोन वाइब है, मतलब कि स्टेयर्स को फास्ट एंड फ्यूरियस ट्रैक मत समझना. लकी कलर इज टर्कोइज. लकी नंबर इज 8. केप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, मून एंड वीनस करियर और फाइनेंसेस को स्पॉटलाइट में ला रहे हैं. पर्सनल बिलोंगिंग्स संभाल के रखो और इम्पल्सिव शॉपिंग से बचो. सेल देखकर वॉलेट को आई हैंडल दिस मत बोल देना. लकी कलर फॉर यू इज ब्लैक. लकी नंबर इज 16. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, मून एंड प्लूटो इमोशंस को इंटेंस बना सकते हैं, स्पेशली अराउंड वन बिग मिशन. स्टे ऑप्टिमिस्टिक, सरप्राइज इन्विटेशंस कुड बी कमिंग योर वे. बस इनवाइट को एक्सेप्ट करने से पहले लोकेशन जरूर चेक कर लेना. लकी कलर इज इलेक्ट्रिक ब्लू. लकी नंबर इज 24. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसेस यानी कि मीन राशि, फाइनेंशियल गेन्स का आउटलुक स्ट्रांग है, लेकिन प्रोफेशनल कॉन्वर्सेशन में कॉशन बनाए रखो. लव में ट्रस्ट ग्रो करेगा, बस अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स को म्यूट कर देना. हर बात का कोर्ट रूम हियरिंग जरूरी नहीं होता. लकी कलर इज सी ग्रीन. लकी नंबर इज 5. एंड दैट वाज योर राशि जोन फॉर टुडे. मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर. मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

0: Energy Mornings with Priscilla. It's hot.
1: हेलो हेलो, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में सुन रहे तो मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड जस्ट लाइक दैट, अब मेरा रैप अप का टाइम शुरू हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर हैंगिंग आउट विद मी। लेकिन बिफोर आई लेट यू गो एंड बिफोर आई गो, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो बनता है यार। नानक फूड्स प्रेजेंट्स मिर्ची करेगा बंधन पूरा, एक कॉन्टेस्ट चल रहा है मिर्ची पर, रक्षाबंधन स्पेशल कॉन्टेस्ट है। अगर तुम जीतना चाहते हो नानक फूड्स की तरफ से अमेजिंग गिफ्ट हैम्पर्स, तो पार्टिसिपेट करने के लिए फटाफट से व्हाट्सएप करो राखी RAKHI और उसे भेज दो 9033 मिर्ची पर, दैट्स 9033647244। या फिर तुम मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, इन एसोसिएशन विद वीरानी ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड, जहां पर फेस्टिव स्पेशल ऑफर्स चल रहे हैं 22 कैरेट गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी के। विजिट करो वीरानीज्वेलर्स.com। एंड टू एवरीवन सेलिब्रेटिंग ओनम, हैप्पी ओनम, मे योर डे बी फिल्ड विद हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, डिलिशियस फूड एंड अ प्रॉपर साध्या, और ऑब्वियसली वन extra serving of the payasam because calories don't count during festivals. Main hoon Priscilla signing off from Mirchi Mornings. Keep smiling, keep it desi, and remember, stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जमाने के गाने, उस जमाने की बातें, इस जमाने की श्रेया के साथ ओनली ऑन पुरानी जीन्स। हेलो एंड वेलकम। आज ना एक ऐसे राइटर के बारे में बात करेंगे जिनका कमांड सिर्फ एक लैंग्वेज पे नहीं था, वो जितनी खूबसूरती से हिंदी में लिख लेते थे उतनी ही खूबसूरती से उर्दू में भी लिख लेते थे। उन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत सारी फिल्में नहीं बनाई, अपने पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में, लेकिन उनके लिए कहा जाता है कि जब वो फिल्म बनाते थे ना तो पूरी तबीयत से बनाते थे, पूरा अपना टाइम लेकर के बनाते थे। जब आगे बढ़ जाते थे और उन्हें लगता था कि ये जो पोर्शन मैं ऑलरेडी शूट कर चुका हूँ वो इतने बेहतर नहीं है, तो फिर से सब कुछ स्क्रैप करके फिर से नया शूट करते थे। वो हमेशा ये चाहते थे कि उनका ऑडियंस जब सिनेमा हॉल से उठे तो ये कहते हुए उठे कि वाह कमाल अमरोही ने क्या फिल्म बनाई। तो आज कमाल साहब की बात करेंगे जिन्होंने मीना कुमारी के साथ बनाई पाकीज़ा, हेमा मालिनी के साथ बनाई रज़िया सुल्तान, मधुबाला के साथ बनाई महल। तो बस कहीं भी मत जाना, श्रेया के साथ यहीं रुकना, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, ये कमलेश जी?
3: हाँ जी, कौन?
4: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
3: कौन से पैसे दिए तुम्हें?
4: नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
3: देखिए,
4: मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
3: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
4: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए का बहुत बड़ी कीमत जो आप देने को मना कर रहे हो?
3: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या, तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
4: आप नहीं दे रहे फिर?
3: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
4: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
5: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
3: with us? Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
5: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
3: No, not an issue. 750 only?
5: Yes, sir, absolutely.
4: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam ghejne mein pad gayi.
1: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: Yep, Murga.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

जब भी वो अपना लिखा कुछ पढ़ते थे ना, तो लोगों की महफिल जम जाती थी और तालियों की गड़गड़ाहट की गूंज दूर तक सुनाई देती थी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। अच्छा, अमरोही कैसे, ये नाम कैसे पता? ये उनका सरनेम नहीं था एक्चुअली, ये पैदा हुए थे यूपी के एक छोटी सी जगह जिसका नाम था अमरोहा में। मुंबई गए, वहाँ काम करने लगे, लेकिन अपने अमरोहा को बहुत मिस करते थे, तो उन्होंने अपना नाम रख लिया कमाल अमरोहा से अमरोही, वही नाम जिससे हम उन्हें पहचानते हैं। अच्छा, कमाल अमरोही को बॉलीवुड में, उस टाइम तो इसे इंडियन सिनेमा कहते थे, यहाँ पर लेकर के कौन आया अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
4: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.

Radio Mirchi, New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

वो क्या कहते हैं कि हीरे की परख जौहरी को होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही कमाल अमरोही साहब की। आपको पता है उनको इंडियन सिनेमा में कौन लेकर के आया था? वो जिनका नाम लेते हुए भी इस समय ना मेरे हाथ कानों को छू लेते हैं। इट वॉज नन अदर देन केएल सहगल साहब। तो केएल सहगल कमाल साहब से मिले थे एक पार्टी में। वहाँ पर कमाल साहब को कोई खास जानता नहीं था। केएल सहगल से वो एज अ फैन बॉय मिलने गए और उनकी तारीफ में अपना लिखा हुआ कुछ पढ़ा। सहगल साहब उनकी लिखावट से इतने इम्प्रेस हुए क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि ये नया लड़का जरूर इंडियन फिल्म्स में कुछ कर सकता है। उन्होंने ऑफर किया कि चलो भाई मेरे साथ बॉम्बे चलो, तुम यहाँ के लिए नहीं वहाँ के लिए बने हो। बस कमाल साहब को तो एक मौका चाहिए था। वो मुंबई पहुंच गए और वहां पर उनकी मुलाकात हुई शुराब मोदी से, जिनके साथ उन्होंने जेलर, पुकार इन दो फिल्मों पे काम किया। पर वो कौन सी फिल्म थी जिसने रातों रात कमाल साहब का नाम हर घर में पहुंचा दिया? अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
5: आई आई आई आई आई आई

इस फिल्म से बहुत सारे लेजेंड्स अपनी शुरुआत करने वाले थे। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू एक ऐसी फिल्म बनी जिसने बहुत सारे उन कलाकारों को पहली बार जगा दी जो इंडियन सिनेमा में आने वाले कई सालों तक राज करने वाले थे। कमाल अमरोही साहब की पहली गोस्ट फिल्म जिसका नाम था महल, इस फिल्म से अपना डेब्यू किया मधुबाला जी ने और उनपे एक गाना पिक्चराइज किया गया था आएगा आने वाला, जो कि गाया लता जी ने। लता जी ने वैसे बहुत सारे गाने गाए थे इससे पहले, लेकिन उनका गाया हुआ ये गाना जब ऑल इंडिया रेडियो पे आया ना, तो वहाँ के फोन ना बजते हुए रुक नहीं रहे थे ये पूछने के लिए कि ये गाना किसने गाया है। सो इन अ वे लता जी का भी ये डेब्यू था, विच मेड हर अ स्टार। एंड ऑफ कोर्स इस फिल्म से अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू कर रहे थे कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पर आज उन्हीं की बातें विद मी श्रेया। सो वापस आओ।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा पहले के टाइम पे क्या होता था कि जब कोई डायरेक्टर अपनी फिल्म बनाता था ना, तो वो इक्वली इन्वेस्टेड, इक्वली इन्वॉल्व होता था इन द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, इन द डायलॉग्स ऑफ द फिल्म. मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते थे लेकिन डायरेक्टर का इनपुट सबसे इम्पोर्टेंट. और अगर कहीं वो कमाल साहब की फिल्म, तो वो कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग तक में उतर आते थे. इतनी बारीकियां. आपको पता है फिल्म पाकीज़ा जो उन्होंने मीना कुमारी यानी अपनी वाइफ के साथ बनाई थी, इस फिल्म को बनाने में कई साल लग गए. एक तो मीना कुमारी और कमाल साहब के बीच में मनमुटाव हो गया था, दोनों अलग हो गए थे, तो इसलिए फिल्म रुक गई थी 10 सालों के लिए. उसके बाद जब बननी भी शुरू हुई तो कमाल साहब वो सो पर्टिकुलर अबाउट एवरीथिंग कि जो एक्स्ट्रास होते थे ना, उनकी ज्वेलरी, उनकी कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग सब वो खुद किया करते थे. अब भाई इस फिल्म की बात हुई है तो इसी फिल्म का गाना ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है. सो पाकीज़ा का गाना कमिंग अप राइट नेक्स्ट फॉर यू. मेरा नाम है श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स.

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची।
2: हेलो
3: हेलो
2: हेलो
3: जयदीप।
2: हाँ जी।
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना। ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी कह के यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो।
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: नहीं है आपको। मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेगा जब तो अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको, काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं यूज, कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में।
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर
2: है?
3: अपना हथौड़ा ना चलने पे अब सारा ने।
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुली नहीं रहा, क्या करूँगा
2: अब? अबे अबे भाई भाई भाई

जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, कमाल अमरोही साहब जो जब फिल्म बनाते थे ना तो तबीयत से बनाते थे, पूरा समय लेकर के बनाते थे। इसीलिए अपने पूरे टेन्योर में उन्होंने सिर्फ चार फिल्में बनाई। जब उन्होंने महल बनाई जो कि फर्स्ट हॉरर फिल्म कही जाती है, मतलब फर्स्ट प्रॉपर कमर्शियल हॉरर फिल्म ऑफ इंडिया कही जाती है, जब वो बना रहे थे ना तो उसके डायलॉग्स में भी इक्वली इन्वॉल्व थे। इस फिल्म के डायलॉग्स पूरे इंडिया में पॉपुलर हुए। एक डायलॉग था, मुझे जरा होश में आने दो, मैं खामोश रहना चाहता हूँ, विच बिकेम इमेंसली पॉपुलर। और दूसरा पता है कौन सा था? स्लो पॉइजन अक्सर मीठे होते हैं और धोखे अक्सर हसीन। मुझे लगता है कि जब भी उस जमाने में कोई अपनी गर्लफ्रेंड से धोखा खाता था तो ये डायलॉग जरूर बोलता होगा। कमाल साहब की आज कमाल की बातें विद मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जींस। बस वापस आओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

इससे पहले तक इंडियन सिनेमा में ऐसा नहीं हुआ था जो कमाल साहब ने अपनी डायरेक्टोरियल डेब्यू महल फिल्म के साथ किया। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। तो आज कमाल अमरोही की बात हो रही है, उनकी डायरेक्टोरियल डेब्यू थी महल। पहली बार ऐसा हुआ जब ये भूत वाली फिल्म में एक बैकग्राउंड गाना दिया गया और वो थ्रू आउट द फिल्म कैरी फॉरवर्ड रहा। मतलब वो गाना इंडिकेट करता था कि फिल्म में अब कुछ भूतिया होने वाला है, फिल्म में अब कुछ सस्पेंस आने वाला है, है ना। कमाल साहब की शुरुआत करने के बाद इस ट्रेंड को इंडिया की हर सस्पेंस, हर मिस्ट्री फिल्म ने, हर घोस्ट फिल्म ने फिर फॉलो किया। फिर चाहे वो मधुमती हो, वो कौन थी हो, या फिर मेरा साया। तो इसकी शुरुआत करने वाले वही थे अपने कमाल अमरोही। पुरानी जीन्स पे आज उन्हीं की बातें, बैक टू बैक विद मी श्रेया।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच,
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
3: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

अच्छा, आजकल एक ही डायरेक्टर कई सारी फिल्में बनाते हैं, लेकिन कमाल अमरोही साहब ने अपने बहुत बड़े करियर में सिर्फ 4 फिल्में बनाई, क्योंकि वो हमेशा ये चाहते थे कि वो क्वालिटी वर्क बनाए। वो हमेशा ये चाहते थे कि जब भी ऑडियंस सिनेमा हॉल से निकले ना, तो ये याद करके निकले कि उन्होंने कमाल अमरोही की फिल्म देखी। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। वो 4 फिल्में जो कमाल साहब ने बनाई, एक तो महल, दूसरी पाकीज़ा, तीसरी रजिया सुल्तान और एक चौथी थी जिसका नाम था दायरा। इन सबके बीच में ना एक फिल्म बनाने का सपना उनका अधूरा रह गया। वो कौन सी फिल्म थी अभी बताऊंगी। श्रेया के साथ वापस आओ ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

कमाल अमरोही साहब जैसे इंसान जब किसी को तोहफा देंगे तो वो भी तो एकदम कमाल, एकदम नायाब होगा। पुरानी जीन्स पर उस जमाने के गाने, उस जमाने की बातें विद इस जमाने की श्रेया। हाँ, तो कमाल साहब की बात हो रही है, उनकी और मीना कुमारी की शादी की पहली रात। कमाल साहब मीना कुमारी के पास गए। अब भाई वो ट्रेडिशन होता है ना कि आप शादी की पहली रात कोई तोहफा दोगे अपनी वाइफ को। कमाल साहब गए मीना कुमारी के पास और उनसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा तोहफा लाया हूँ जो जिंदगी भर तुम्हें याद रहेगा। एक ऐसी फिल्म बनाऊंगा मैं तुम्हारे ऊपर जिससे ये दुनिया जब भी तुम्हारा नाम लेगी तो वो फिल्म का नाम भी साथ में आएगा। ये फिल्म उन्होंने बनाई। ऑफ कोर्स काफी साल लग गए इस फिल्म को बनने में क्योंकि दोनों बीच में अलग हो गए थे, बट दे केम बैक टुगेदर टू कम्प्लीट दिस फिल्म। फिल्म का नाम पाकीज़ा, जिसमें बेहद खूबसूरत लगी मीना कुमारी। तो ये थी पाकीज़ा की शुरुआत होने की कहानी। एक और कहानी बाकी है अभी कमाल साहब की एक अधूरी फिल्म की, बताऊंगी उसके बारे में भी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो
5: ये कमलेश जी।
4: हाँ जी कौन?
5: कमलेश जी गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने लाजवंती ने वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
4: कौन से पैसे चाहिए तुम्हें?
5: नहीं देखिए एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का खिलाफ उसकी बाहर की दीवार देखो उसमें पुताई होनी है।
4: अरे तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ पैसे।
5: देखिए मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
4: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
5: भाई साहब एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
4: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे। कोई त्योहार नहीं है, कोई फेस्टिवल नहीं है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चंदा मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
5: आप नहीं दे रहे फिर?
4: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
5: ना दे रहे लाजवंती ना मान रहे।
6: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for. Because we feel we're all family. And my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
4: yes,
6: with us?
4: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
6: It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I'm sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
4: No, not an issue. 750 only?
6: Yes, sir, absolutely.
5: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aayi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
1: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's hot.
2: Yeah, pata.
0: Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा गुरु, जब वो ऐसा कहेगी ना तो मैं जवाब क्या दूंगा?
1: जवाब? अरे बांगड़ू, प्यार में जवाब अपने आप पूछ जाता है। कहना अनुराधा।
2: अरे गुरु गुरु गुरु, अनुराधा नहीं, बिंदू बिंदू।
3: अरे तेरी की भूला।
1: कहना कहना
0: क्या?

महल बनाई इन्होंने, पाकीजा बनाई इन्होंने, रजिया सुल्तान बनाई इन्होंने। अब इनका ड्रीम था आखिरी मुगल बनाने का। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज बात हो रही है राइटर डायरेक्टर कमाल अमरोही साहब की। तो मैं बता रही थी कि कैसे पूरे टेन्योर में सिर्फ 4 फिल्में इन्होंने बनाई और एक फिल्म पे काम कर रहे थे। इनका ड्रीम था हिस्ट्री पे एक फिल्म बनाने का और उसका नाम इन्होंने रखा था आखिरी मुगल। इस फिल्म की स्क्रिप्ट उन्होंने आधी लिख ली थी और स्क्रिप्ट से पहले इसके गाने भी बन गए थे, पर ये फिल्म कभी पूरी नहीं हो पाई। उनके जाने के बाद लोगों ने इस स्क्रिप्ट को ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन कमाल साहब की लिखी हुई ये कहानी कहीं खो गई। लेकिन हाँ, गानों का कुछ हुआ। क्या हुआ? आपको तो पता ही है, ऐसे इतनी जल्दबाजी में मैं कुछ नहीं बताती हूँ। गाने सुनकर के वापस आओ, विल लेट यू नो पूरी कहानी ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
2: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
1: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
2: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
3: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
4: Har gana hit, har dusra gana super hit.
5: Only on Radio Mirchi. It's hot.
6: Ah, ah,
0: ah, ah. Aap sun rahe hain Purani Jeans. श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

1989 में एक फिल्म आई जिसने कमाल अमरोही साहब की अधूरी फिल्म आखिरी मुगल का एक गाना ले लिया, एक गाना यूज किया। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया और आज कमाल अमरोही साहब की बात हो रही है। सो एक अधूरी फिल्म वो छोड़ करके गए जिसका नाम था आखिरी मुगल। उनका ये ड्रीम था कि वो एक ऐसी फिल्म बनाए जो कि इंडिया की हिस्ट्री पे हो। इस फिल्म का नाम उन्होंने रखा था आखिरी मुगल। कमाल साहब वॉज प्लानिंग द फिल्म, आधी फिल्म लिख ली थी लेकिन इसके गाने कई सारे रिकॉर्ड कर लिए थे। अब फिल्म तो बीच में रुक गई थी, तो पता है उन्होंने एक गाना सेल किया और ये उन्होंने दिया था टू द मेकर्स ऑफ अ फिल्म जिसका नाम था जिस्म का रिश्ता। 1989 में ये फिल्म आई थी और इसी फिल्म में रफी साहब का एक गाना यूज हुआ था जो कि आखिरी मुगल के लिए बनाया गया था। पुरानी जीन्स पर कमाल अमरोही साहब की ये कमाल की बातें आज चलती रहेंगी, तो बस कहीं भी मत जाना।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
2: अर्ज किया है चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा तबड़क तबड़क
1: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं द स्टेज इज सेट इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट मिर्ची हॉट माइक
3: सिंगिंग स्टैंड अप शायरी या मैजिक कोई भी हो टैलेंट आज ही रजिस्टर करें व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची
4: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
5: हे तुमने कभी किसी से प्यार किया
6: किया
5: कभी किसी को

पुरानी जीन्स पर श्रेया का जाने का टाइम हो गया है और जब मैं जाती हूँ तो आपको तो पता ही है मैं अपने साथ गाड़ी में आपको बैठा ले जाती हूँ। और कहाँ जाते हैं अच्छा आज का हाईवे हेट उन लोगों पे है जो ना जुबान से ज्यादा बात नहीं करते, उनको सामने वाले की नजरों से सब पता चल जाता है। पूरा कमरा भरा हो सकता है, पूरा हॉल भरा हो सकता है लोगों से, लेकिन इनकी बातें नजरों से चल रही होती हैं और शायद कुछ ऐसा कह रही होती हैं। बहुत कम लोगों की नजरें आपको प्यार के काबिल समझ पाती हैं। अगर ऐसी कोई नजर आपके पास है ना, उसे संभाल के रखना। दिस इज मी श्रेया, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: आओ बच्चों, आज तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं मैं। शेर की कहानी सुनोगे?

कई साल पहले की ये बात है, भयानक अंधेरी सिया रात में लिए अपनी बंदूक में हाथ में

0: जा रहा था? नहीं, आ रहा था। नहीं नहीं, जा रहा था।
1: उफ़, आगे भी तो बोलो ना।
0: बताता हूँ बताता हूँ। नहीं भूलती उफ वो जंगल की रात, मुझे याद है वो थी मंगल की रात। चला जा रहा था मैं डरता हुआ, हनुमान चालीसा पढ़ता हुआ। बोलो हनुमान की जय, जय जय बजरंग बली की जय। हाँ बोलो हनुमान की जय, जय हो बजरंग बली की जय। खड़ी थी अंधेरा मगर सख्त था, कोई दस सवा दस का बस वक्त था।

0: लरजता था कोयल की भी कूक से, बुरा हाल हुआ उस पे भूख से, लगा तोड़ने एक बेरी से बेर, मेरे सामने आ गया एक शेर।
1: कोई खिड़की बन के नजर फिर गई तो बंदूक भी हाथ से गिर गई। मैं लपका, वो झपका, मैं ऊपर, वो नीचे, वो आगे, मैं पीछे, मैं पेड़ पे, वो पीछे, अरे बचाओ, मैं डाल डाल, वो पान पान, मैं पसीना, वो दाद दाद, मैं सुर में, वो ताल में, ये जंगल पाताल में, बचाओ, बचाओ, अरे भागो रे भागो, अरे भागो।

0: एक रियलिटी शो पे शुरू हुआ था इनके 7 जन्मों का सफर।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के अल्टीमेट म्यूजिशियन एंड सिंगर डुओ सचेत टंडन एंड परंपरा ठाकुर, जो अब बन चुकी हैं परंपरा टंडन। एंड यू नो, अक्सर आपने अपने आसपास सुना होगा कि यार अपने वर्क स्पेस में ना आपको कोई रिलेशनशिप नहीं करना चाहिए, एवरीथिंग गेट्स मिक्स्ड अप, कोई पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ नहीं रह जाती। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट सचेत एंड परंपरा, जो मिले थे द वॉइस ऑफ इंडिया के फर्स्ट सीजन में और वहां शुरू हुई उनकी म्यूजिकल पार्टनरशिप। एंड इवेंचुअली बॉलीवुड गॉट द डुओ बिहाइंड बेखयाली एंड मच मोर लव्ड सॉन्ग्स। और आज अचानक इन दोनों के पार्टनरशिप की बात इसलिए चल रही है क्योंकि मेरे शो पे होने वाले हैं ये दोनों ही मिर्ची गिरफ्तार, जिनसे होगी इनके करियर, इनके लाइफ, इनकी पार्टनरशिप, सब चीज के बारे में डिटेल्ड बात। बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल्ड बाबू मोशाय। अभी तो इस गिरफ्तारी के अलावा और भी बहुत कुछ प्लान है ऑन द शो, बट टू एंजॉय ऑल ऑफ दैट यू विल हैव टू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची। मैं हूं आपके साथ श्रुति, इट्स ऑल।

0: Milchi.
1: Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Murga, murga. Na vidva la murga. Milchi, murga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका, आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से। मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
2: नहीं नहीं कोई बात नहीं।
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू?
3: दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो मिर्च। गॉड ब्लेस यू। आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी। हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इन्फॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हैंगओवर अभी उतरा नहीं था, दैट दूसरे नशे की तैयारी हो चुकी है। ओके ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, भाई मैं आवारापन 2 के हैंगओवर की बात कर रही हूँ जो अभी उतरा नहीं था। दैट प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने जन्नत 3 कंफर्म कर दी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग इज अंडर वे एंड बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। AR रहमान तमिलनाडु से अगला सिंगिंग टैलेंट ढूंढने वाले हैं, तभी तो उन्होंने लॉन्च किया है तमिल आइडल। हां जी, द शो एम्स टू डिस्कवर, सेलिब्रेट एंड नर्चर द नेक्स्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तमिल वॉइस। आगे शेक्सपियर ने भले ही कहा है व्हाट्स देयर इन नेम, बट AR रहमान का नाम अगर किसी प्रोजेक्ट पर जुड़ जाए तो उसमें तो 4 चांद लगने ही लगने हैं। द रेवोल्यूशनरीज नाम की पीरियड ड्रामा सीरीज, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं निखिल आडवाणी। बैकड्रॉप होगा इसका इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और इस सीरीज में रोहित सराफ, भुवन बम, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह के साथ साथ लापता लेडीज फेम प्रतिभा रत्ना भी नजर आएंगी। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर का प्रोमो भी आ चुका है, नहीं देखा देन गो चेक इट आउट। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.

0: And it's time to find Mirchi for Lunchy.
1: Shruti, Shruti, Shruti.
2: Main toh badi filmi hoon.
0: Mirchi pe tuned in ho aap. And if you're listening to me for the first time, then let me remind. Abhi ka jo session hota hai, wo Mirchi for Lunchy dhoondne ka hota hai. Jahan main aapse request karti hoon to go to my Instagram and DM karo apna number. Taki main aapko call karke ye filmi game khel sakun. So aaj humare saath sabse pehle telephone line pe hai Himanshu ji. Shuru kare?
3: बिल्कुल
0: ओके okay. तो मेरा पहला सवाल ये है कि सलमान खान की फिल्म जिसमें उनका एक डायलॉग है, चलती है क्या 9 से 12?
3: चलती है क्या 9 से 12? ये तो जुड़वा.
0: ग्रेट. जुड़वा में माला का रोल किसने प्ले किया है?
3: माला का रोल वो करिश्मा कपूर.
0: ग्रेट. करिश्मा कपूर की फिल्म जिसमें वो डांसर बनी है?
3: ये शाहरुख खान और माधुरी दीक्षित वाली.
0: बिल्कुल बिल्कुल.
3: दिल तो पागल है.
0: बहुत ही बढ़िया. दिल तो पागल है में डांस ग्रुप के डायरेक्टर कौन होते हैं?
3: शाहरुख खान.
0: शाहरुख खान की फिल्म जिसमें वो 6 दिन में लड़की इन करवाते हैं?
3: वो सैफ अली खान और प्रीति जिंटा वाली.
0: हाँ हाँ.
3: कल होना हो.
0: बहुत ही बढ़िया. कल होना हो की नैना कौन है?
3: प्रीति जिंटा.
0: प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो आरजे बनी है और प्रेग्नेंट हो जाती है?
3: सेम अगेन सैफ अली खान के साथ है.
0: हाँ? कोई बात नहीं. बट इतना अच्छा जो गेम यहाँ तक कंटिन्यू किया है आपने, उसके लिए आपको ये टैग मिलना तो बनता है मानशु जी.
1: मिर्ची फिल्म जी.
0: माई डियर फ्रेंड, अगर इसके आगे का गेम आप कंटिन्यू करना चाहते हैं, देन यू ऑलरेडी नो द ड्रिल. मिर्ची श्रुति के इंस्टा पे जाके अपना नंबर सेंड कीजिए एंड रेस्ट मेरे ऊपर छोड़ दीजिए. स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

Mirchi, it's hot.

0: पता नहीं।
1: चलो आपके अंदर के फिल्मी कीड़े को जगाते हैं।
2: श्रुति श्रुति
3: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
1: मिर्ची पे ट्यून्ड इन हूँ आप, एंड ये चीज तो मुझे समझ में आ गई है यार कि हर हिंदुस्तानी जो है उसके अंदर एक फिल्मी कीड़ा जरूर छुपा होता है जिसको निकालने की जिम्मेदारी मैंने ले रखी है। सो ऑन अ डेली बेसिस मैं यहाँ पे दो मिर्ची फिल्मची ढूंढती हूँ। बेसिकली द ड्रिल इज कि आपको मेरे इंस्टा पे जाके अपना नंबर भेजना होता है ताकि मैं आपको कॉल कर सकूं और ये गेम शुरू कर सकूं। आज के गेम की शुरुआत हुई थी हिमांशु जी से, बट ही गॉट स्टक एट अ पॉइंट, और उसके आगे का गेम खेलने के लिए कौन है मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे?
4: हेलो, गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून, किससे बात हो रही है?
4: दिनेश सिंह बात कर रहा हूँ मैम।
1: दिनेश जी, गेम शुरू करें आपके साथ ही आगे।
4: यस मैम, यस।
1: ओके, प्रीति जिंटा की फिल्म जिसमें वो आरजे हैं और प्रेग्नेंट हो जाती हैं।
4: मैम सलाम नमस्ते।
1: बहुत बढ़िया, सलाम नमस्ते के मेल लीड कौन है?
4: सैफ अली खान।
1: सैफ अली खान किस फिल्म में लंगड़ा त्यागी बने हैं?
4: ओमकारा।
1: ओमकारा में करीना के हस्बैंड कौन है?
4: अजय देवगन।
1: अजय देवगन की किस फिल्म में उनका नाम गोपाल है?
4: गोलमाल रिटर्न, गोलमाल मतलब गोलमाल सीरीज है।
1: बहुत बढ़िया, गोलमाल में अंधे दादाजी कौन बने हैं?
4: परेश रावल मैम।
1: परेश रावल की फिल्म जिसमें वो स्टार गराज चलाते हैं?
4: हेरा फेरी। हेरा फेरी
1: हेरा फेरी में राजू कौन बना है?
4: राजू भैया अक्षय कुमार।
1: अक्षय कुमार को किस फिल्म में डॉन की बहन से प्यार हो जाता है?
4: वेलकम।
1: वेलकम में घोड़े के ऊपर गधे की पेंटिंग कौन बनाता है?
4: मजनू, वो अनिल कपूर।
1: अनिल कपूर की फिल्म जिसमें वो एक दिन के सीएम बने हैं?
4: नायक।
1: नायक में करप्ट सीएम का रोल किसने प्ले किया है?
4: वो अमरीश पुरी।
1: अमरीश पुरी की फिल्म जिसमें वो सिमरन को जिंदगी जीने के लिए बोलते हैं?
4: डीडीएलजे।
1: डीडीएलजे में भाग के ट्रेन कौन पकड़ता है?
4: काजोल। काजोल
1: काजोल को किस फिल्म में दिखाई नहीं देता?
4: फना।
1: फना में टेररिस्ट कौन बना?
4: आमिर खान।
1: आमिर खान एलियन किस फिल्म में बने?
4: पीके।
1: पीके में जर्नलिस्ट कौन है?
4: अनुष्का शर्मा।
1: बहुत ही बढ़िया, क्या बात है, मजा आया आपको?
4: यस मैम, मैं तो बहुत एक्साइटेड था मैम, कब विनर बने।
1: तो लीजिए आप विनर बन गए, और इसी के साथ आपको ये टैग भी दे देते हैं।
2: मिर्ची फिल्मची।
1: सच सच बताना, आपके अंदर का फिल्मी कीड़ा भी ऐसे से कुलमुला गया ना इस गेम को सुन के, तो एक काम करो, कल से इस गेम का हिस्सा बनने के लिए मेरे इंस्टाग्राम पे अभी जाओ और मुझे अपना नंबर भेज दो। एंड देयर विद द नेम MIRCHISHRUTI, यानी मिर्ची श्रुति। टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स ऑल।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vidva la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Jadip.
2: Hanji.
3: Ye. भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना, ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था।
2: हाँ जी।
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार, दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो?
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं।
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ, तो काम करेंगे जब तो अच्छी क्वालिटी के।
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो, उसको काम क्यों नहीं करेंगे?
3: क्या यूज करूं, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा।
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको।
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है?
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं की।
3: तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा।
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा।
3: एक सेकंड, अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस। ये तो है भी बड़ा रिस्की, ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है, ये रहा थोड़ा नहीं खुल रहा, पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ नहीं खुल रहा।
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी। अच्छा, तो खुलेगा।
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी, अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा। चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ। 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा। कि सर ले जाओ, हमारा यकीन करो, आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम। जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खुली नहीं रही।
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में।
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर अपना हथौड़ा ना चलने पर आप लोग सारा ने।
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप?
2: अबे अबे अबे भाई भाई भाई तू जो करना है कर, तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो।
3: ठीक है, मैं वापस कर रहा हूँ। ठीक है, मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पगला।

जिसमें रेनफॉल को एज अ सिंबल ऑफ मॉरल डीके दिखाया गया है. सो अकॉर्डिंग टू मी इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, इसका विजुअल वर्ल्ड. हर फ्रेम इतना हॉन्टिंग और सिनेमेटिक है कि लगता है कि आप खुद तुम्बाड की बारिश भरी गलियों में चल रहे हैं. दूसरी, ये सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं है, ये ग्रीड, एम्बिशन और इंसान की कभी ना खत्म होने वाली भूख की कहानी है. और तीसरी, इसका क्लाइमेक्स, ऐसी एंडिंग जो क्रेडिट्स के बाद भी काफी देर तक आपके दिमाग में घूमती रहती है. इन शॉर्ट, तुम्बाड सिर्फ डराती नहीं, सोचने पे भी मजबूर करती है, एंड वही उसे कल्ट भी बनाती है. अ मस्ट वॉच फॉर श्योर. मूविंग ऑन, नंबर तीन पे बात करते हैं साल 2004 की रिलीज रेनकोट, जहां ऋतुपर्णो घोष ने अपनी इस फिल्म के दोनों प्रोटैगनिस्ट के जो भी रिग्रेट्स हैं उसको लिंक किया है बारिश से. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, अजय देवगन और ऐश्वर्या राय की रिस्ट्रेन्ड हार्टफेल्ट परफॉर्मेंसेस, जहां आंखों ने लफ्जों से ज्यादा बात की है. दूसरी, ऋतुपर्ण घोष की स्टोरी टेलिंग, जो दिखाती है कि कुछ मोहब्बतें कभी खत्म नहीं होती, बस वक्त के साथ चुप हो जाती हैं. और तीसरी, इस फिल्म की बारिश. यहाँ बारिश सिर्फ मौसम नहीं है, ये एक एहसास है, क्योंकि हर बूंद अधूरी मोहब्बत, पुरानी यादों और उन बातों का बोझ लेकर गिरती है जो दोनों एक्टर्स एक दूसरे से कभी कह ही नहीं पाए. एंड ऑनेस्टली, शायद ये फिल्म देखने के बाद आपको बारिश पहले जैसी फील ना दे. वेल, मेरी इस लिस्ट में और भी दो ऐसी ही फिल्मों की बातें बाकी है, बट ऑल ऑफ दैट इन अ वाइल. टिल देन, यू स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मेन स्ट्रीम मानसून मूवी से अलग हैं ये फिल्में।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ,
0: क्योंकि यहाँ रेन का इस्तेमाल किया गया है टू एक्सप्रेस सोशल डिवाइड, इंटिमेसी, डिजायर, लोनलीनेस एंड जॉय। और आज पांच का पंच की लिस्ट में मैं कुछ ऐसी ही फिल्मों को डिस्कस कर रही हूँ। सबसे पहले हमने बात की अबाउट मानसून वेडिंग, अब नंबर दो पे लेट्स टॉक अबाउट तुम्बाड, जो साल 2018 में रिलीज हुई थी, रिटन एंड डायरेक्टेड बाय राही अनिल बारवे।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.

0: Not your typical monsoon movie.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: चक धूम धूम चक धूम धूम चक धूम धूम. देखो यार, बारिश और बॉलीवुड से सबसे पहला गाना मेरे दिमाग में यही आता है. या फॉर दैट मैटर, गीली साड़ियों में नाचती लड़कियां, कोरियोग्राफ्ड नंबर्स एंड व्हाट नॉट. लेकिन आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसी मॉनसून मूवीज की बात कर रही हूँ जिन्होंने बारिश को एकदम ही अलग पर्सपेक्टिव से दिखाया है. लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट मॉनसून वेडिंग, नंबर दो पे तुम्बाड, नंबर तीन पे रेनकोट, एंड अब बारी है टू टॉक अबाउट द मूवी कौन. ये फिल्म आई थी 1999 में. एंड कुछ फिल्में आपको डराती हैं, कुछ फिल्में आपको हर इंसान पर शक करना सिखाती हैं. वेल, कौन उन्हीं फिल्मों में से एक है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, सिर्फ तीन कैरेक्टर्स और लगभग पूरी फिल्म एक ही घर के अंदर, फिर भी सस्पेंस एक सेकेंड के लिए भी कम नहीं होता. दूसरी, उर्मिला मातोंडकर और मनोज बाजपेयी की परफॉर्मेंसेस जो बिना लाउड हुए आपको एज ऑफ योर सीट पर बिठा देती हैं. और तीसरी, इसका ट्विस्ट, ऐसा ट्विस्ट जो फिल्म खत्म होने के बाद भी आपको सोचने पे मजबूर कर दे कि भाई असली खतरा था कौन. और इस पूरी कहानी के बीच जिस हिसाब से बारिश और थंडर अपना रोल प्ले करते हैं, दैट ट्रैप्स यू इनसाइड इट्स पैरानोया. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नंबर पांच पे बात करूंगी अबाउट द फिल्म धोबी घाट. मुंबई को अगर किसी फिल्म ने सिर्फ दिखाया नहीं महसूस करवाया है तो ये फिल्म है. इस फिल्म को देखने की तीन वजहें हैं. पहली, मुंबई ऑफ कोर्स, यहाँ शहर सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, फिल्म का एक जिंदा कैरेक्टर है. दूसरी, चार अलग जिंदगियां जो एक दूसरे से जुड़ी भी हैं और बिल्कुल अलग भी, जस्ट लाइक आवर वेरी ओन मुंबई. और तीसरी, इसकी खामोशी. ये फिल्म डायलॉग से कम और नजरों, तन्हाई और अनसेड इमोशन से ज्यादा बात करती है. और इस फिल्म के जरिए किरण राव बहुत ही खूबसूरती से अर्बन लोनलीनेस को बारिश के साथ पेंट करते हुए दिखाती हैं. तो बताइए, पांच का पंच की मेरी इस लिस्ट में आप कोई ऐसी ही फिल्म ऐड करना चाहोगे? मिर्ची श्रुति के नाम से लेट्स कनेक्ट एंड डिस्कस दैट. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड्स, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। हैंगओवर अभी उतरा नहीं था, दैट दूसरे नशे की तैयारी हो चुकी है। ओके ओके, इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, भाई मैं आवारापन 2 के हैंगओवर की बात कर रही हूँ, जो अभी उतरा नहीं था, दैट प्रोड्यूसर विशेष भट्ट ने जन्नत 3 कंफर्म कर दी है, जिसकी स्क्रिप्टिंग इज अंडर वे एंड बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। AR रहमान तमिलनाडु से अगला सिंगिंग टैलेंट ढूंढने वाले हैं, तभी तो उन्होंने लॉन्च किया है तमिल आइडल। हांजी, द शो एम्स टू डिस्कवर, सेलिब्रेट एंड नर्चर द नेक्स्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी तमिल वॉइस। बाकी शेक्सपियर ने भले ही कहा है व्हाट्स देयर इन नेम, बट AR रहमान का नाम अगर किसी प्रोजेक्ट पर जुड़ जाए तो उसमें तो चार चांद लगने ही लगने हैं। द रेवोल्यूशनरीज नाम की पीरियड ड्रामा सीरीज, जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं निखिल आडवाणी, बैकड्रॉप होगा इसका इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, और इस सीरीज में रोहित सराफ, भुवन बम, गुरफतेह पीरजादा और जेसन शाह के साथ साथ लापता लेडीज फेम प्रतिभा रत्ना भी नजर आएंगी। इनफैक्ट उनके कैरेक्टर का प्रोमो भी आ चुका है, नहीं देखा देन गो चेक इट आउट। बाकी अभी के लिए एंटरटेनमेंट की दुनिया से ट्रेंडिंग लिस्ट में सिर्फ इतना ही। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

वेंसडे वाइब्स दैट टू फुल ऑन मिर्ची स्टाइल। शमशान था लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका बुधवार की इस खूबसूरत शाम में। वैसे तो यार वेंसडे का फंडा ना बहुत ही सिंपल होता है, थोड़ा सा फिल्मी हो जाए, थोड़ा सा फंकी हो जाए और बिल्कुल भी बोरिंग ना हो जाए, क्योंकि यार इसीलिए तो कहते हैं इसे वेंसडे द हम डे। वैसे चलिए आज की जो खूबसूरत शाम है इसे बनाते हैं फुल ऑन पैसा वसूल विद बॉलीवुड गॉसिप, ढिनचैक गाने, फिल्मी फंडे और एक से बढ़कर एक फन फैक्ट्स के साथ। क्योंकि यार अगर आपने कॉफी चाय लाटे या फिर देसी चाय उठा ली है तो स्टीयरिंग थोड़ा संभाल के, क्योंकि तड़कते फड़कते गाने बजने वाले हैं अगले पूरे 4 घंटे आपके लिए और होने वाला है मिर्ची मसालेदार और मेगा एंटरटेनिंग। तो चलिए शो शुरू करते हैं और आपके सॉन्ग रिक्वेस्ट भी आते रहिए, सेंड मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi.
1: Iscabana, uscabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. La vieja la burga. Mirchi, burga.
2: Hello.
3: Hello. Anshika? ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्रिमोनियल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से. मैं भी ने भी मैट्रिमोनियल पे डाल रखा है, तो
2: हाँ जी,
3: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए.
2: जी बताइए, इसका नाम क्या है?
3: संतोष. संतोष
2: संतोष
3: संतोष. सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं कहना मैंने?
2: नहीं कोई बात.
3: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है.
2: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू
3: डू? दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है. अंशिका, दिस इज नावेद, आई एम कॉलिंग फ्रॉम रेडियो. गॉड ब्लेस यू. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी. हंस हंस क्या?
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची.

वो कहते हैं ना कि किस्मत में जो लिखा है वो मिलके ही रहता है, लेकिन कभी कभी किस्मत को भी थोड़ा सा हिंट देना पड़ता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी एमी विर्क का किस्मत ये गाना सुनती हूँ ना, एक पूरी कहानी आंखों के सामने आ जाती है। वो प्यार, वो इंतजार और वो थोड़ी सी कसक, और एमी विर्क की वो आवाज़ जो इमोशन को सीधा दिल तक पहुंचाती है। लेकिन इस बार एमी विर्क की कहानी सिर्फ स्क्रीन या प्लेलिस्ट तक नहीं रुकने वाली, क्योंकि शुक्रवार अगस्त 28 को एमी विर्क अपने यूनिटी टूर के साथ न्यू जर्सी आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, एट द वंडरफुल वेन्यू ऑफ कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर इन कार्टरेट न्यू जर्सी, इट्स गोइंग टू बी एन अमित जेटली ऑफ सा यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन।

मिर्चल लिसनर्स के पास कॉन्सर्ट की टिकट्स जीतने का मौका है, तो मुझे बताइए कि अगर एमी विर के कॉन्सर्ट में आपकी किस्मत खुल जाए तो वो कौन सा गाना होगा जो आप सबसे पहले लाइव सुनना चाहोगे। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, टाइप कीजिए एमी विर्क और अपना जवाब और कॉन्टेस्ट में एंटर हो जाओ, क्योंकि हो सकता है अगला डीएम मेरा हो और मैं कहूँ कि बॉस किस्मत में एमी विर्क लाइव शो लिखा है। तो चलिए, अब किस्मत की बात हो ही रही है तो अगला गाना भी वही है, एमी विर्क का किस्मत। ऑन योर मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
3: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

डेट नाइट का एक्साइटमेंट ना दोस्तों रेस्टोरेंट पहुंचने के बाद नहीं, थोड़ा पहले ही शुरू हो जाता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और प्लान चाहे हफ्तों पहले बने हो या शाम को अचानक डिसाइड हुआ हो, रेडी होते वक्त मूड ना ऑटोमेटिकली थोड़ा चेंज हो ही जाता है। फेवरेट आउटफिट, थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट, फेवरेट फ्रेग्रेंस और सबसे इंपॉर्टेंट वो फीलिंग कि आज रूटीन से कुछ अलग होने वाला है। और ऑनेस्टली चाहे सालों पहले की रिलेशनशिप हो या नई नई डेटिंग, कभी कभी ऐसे ही कुछ मोमेंट्स होते हैं जो एक सिंपल से डिनर को भी ना थोड़ा स्पेशल बना देते हैं। तो अगर आजकल आपके कैलेंडर में भी ऐसी कोई इवनिंग आ रही है तो उसे थोड़ा और ड्रेसअप करने का एक बहाना तनिष्क भी दे रहा है। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स विद अप टू 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, 0% डिडक्शन on exchange of old gold above 18 carat. Terms and conditions apply. So, aaj hi visit kijiye Tanishq store at 1429 Oak Tree Road, Iselin, New Jersey and add the diamond glam to your love story. Usi ke saath mujhe zarur bataiye ki aapka ultimate date night Bollywood song kaun sa hai. DM me on Insta at RJ Mirchi Siddhi, SIDDHI, aur chaliye mere romantic playlist ka ye agla gana right here on Mirchi. It's hot.

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: जर्सी की स्ट्रीट पर। कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

ऑफिस के डेडलाइन से थोड़ा काम डाउन होना चाहते हो तो बस एक चम्मच दीप दही काफी है। शमशान द लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और यार ऑफिस के डेडलाइंस, बॉस की बड़बड़ से दिमाग अगर गर्म हो चुका है तो उसे ही कूल करने के लिए दीप दही के साथ एक ठंडी ठंडी लस्सी हो जाए, क्योंकि फार्म फ्रेश, हॉर्मोन फ्री और बिल्कुल घर जैसी टेक्सचर वाली यही है वो दही जो देता है प्योर कम्फर्ट फूड। और अगर लस्सी ना सही, पर अगर रात के डिनर पे एक प्लेट पुलाव और उसके साथ दीप दही के साथ बनाया हुआ वो बूंदी का रायता, ओ हो, बस ऐसा सुकून, ऐसी शांति मिलती है ना कि क्या बताए। तो आज डिनर में हो जाए दीप दही का कूलनेस का क्लासिक फॉर्मूला, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

एक ही आर्टिस्ट पहले आपको इमोशनल भी कर दे और अगले ही गाने में आपसे डांस भी करवा दे, यार ये तो सिर्फ लाइव इन कॉन्सर्ट में ही हो सकता है। शाम शाम लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और एमी विर की प्लेलिस्ट खोलो ना तो मूड का रिमोट उनके हाथ में चला ही जाता है। फिर चाहे किस्मत जैसा गाना हो जिसमें दिल वाले एमी मिलते हैं, या फिर वंगदा नाप हो जिसमें एनर्जी ही बदल जाती है, या फिर उनकी पंजाबी फोक वाली टेक्सचर आए तो यार गाने में एकदम देसी रंग भर जाते हैं। और इसीलिए लाइव इन कॉन्सर्ट का मजा ही अलग होता है। एक ही शाम में रोमांस भी, इमोशन भी और फुल पंजाबी सेलिब्रेशन भी। तो दोस्तों ऐसी शाम आपके लिए आ रही है शुक्रवार को यानी अगस्त 28 को विद एमी वर्क यूनिटी टूर 8:30 बजे से लेकर कार्टरेट परफॉर्मिंग आर्ट्स एंड इवेंट सेंटर में, कार्टरेट न्यू जर्सी में। और दोस्तों इट्स एन अमित जेटली ऑफ साई यूएसए आईएनसी प्रेजेंटेशन, मतलब इवेंट का कैनवस ग्रैंड ही होने वाला है। तो आज ही अपने टिकट्स बुक कर लीजिए फ्रॉम saiusainc.com या फिर sulekha.com। और अब बारी आती है मिर्ची लिसनर्स के उस स्पेशल कॉन्टेस्ट की। जी हाँ दोस्तों, कॉन्टेस्ट बड़ा आसान सा है। आपको बताना है एमी विर का वो कौन सा गाना है जो आप उनसे लाइव सुनना चाहोगे। बहुत ही आसान सा सवाल है, तो जल्दी से एमी विर टाइप कीजिए और मुझे डीएम कीजिए @rjmirchisiddhi siddhi, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी जवाब दे सकते हो @9033647244। जल्दी से जवाब भेजो और हो सकता है वो गाना इस फ्राइडे आप स्क्रीन पर नहीं सामने स्टेज पर सुन रहे हो। तो चलिए थोड़ा पंजाबी तड़का हो जाए एमी विर्क का राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Isca bana, usca bana, saca bana. Rabana. Burka, burka. La fiesta la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो,
2: ये कमलेश जी?
1: हाँ जी, कौन?
2: कमलेश जी, गोपाल बोल रहा हूँ मैं आपकी सोसाइटी से। ये आपके पास भी, आपके पास भी पत्र आया होगा, हमारी पत्नी ने, लाजवंती ने, वो जो एक काम के लिए जिम्मेदारी ली है, आप उसमें पैसा नहीं दे रहे।
1: कौन सा पैसा चाहिए तुम्हें?
2: नहीं नहीं, देखिए, एक तो मैं आपको बताता हूँ, आप ये मत समझो। देखो, ये हमारी जो पत्नी है लाजवंती, उसने ये कहा था कि भाई सोसाइटी का क्लब, उसकी बाहर की दीवार देखो, उसमें पुताई होनी है।
1: ठीक
2: है, मैंने हमेशा कब लिया आपसे? हमने कब लिए आपसे?
1: अरे तो ऐसे हर चीज के तुम्हें पैसे देते रहेंगे, हमने मेंटेनेंस के पैसे दिए, उसी में से करो आप जो कर रहे हैं।
2: भाई साहब, एक बात बताओ, आपके पास 750 रुपए क्या बहुत बड़ी कीमत है जो आप देने को मना कर रहे हो?
1: 750 रुपए मैं थोड़ी ना हर चीज के पैसे देता रहूंगा तुम्हें। बीच में काम होगा तो इसका मतलब क्या तुम हर 10 दिन के पैसे मांगने आ जाओगे? मैं नहीं दे रहा कोई पैसे। कोई कहानी है, कोई फसल है, तुम पैसे लेने शुरू हो जाते हो, चलना मांगने शुरू हो जाते हो, ऐसे नहीं होता।
2: आप नहीं दे रहे फिर?
1: मैं नहीं दे रहा कोई पैसे ऐसे।
2: ना दे रहे लाजवंती, ना मान रहे।
3: I want to talk to him. Sir, I wanted to talk to you, sir. My husband has been trying to explain this to you for over an hour now. It's just a necessity for the society. I don't understand why you're not cooperating with us, sir. It's just a matter of 750 rupees. Why would you not want to contribute to the society and the welfare of this entire place that we all live in together? Are you not interested in the betterment of this public sphere that we are all a part of? I would really request you to just take out some time. Just 750 bucks, sir. That's all we're asking for, because we feel we're all family and my husband and I are really interested in this entire space. So would you be willing to pay us? Hello, sir, are you there? Are you
1: yes,
3: with us?
1: Yes, madam, I'm there. I understand, main samajh raha hu aapko. What is the amount?
3: Kya, sir, it's 750 rupees. It's hardly anything. It's 750 rupees. You know, we pay more than that everywhere we go, even for trips. And we know you, how fond you are of trips, sir. So I am sure it's not going to be an issue with you. So is it all right? Should we write your name? Should we go ahead with this?
1: No, not an issue. 750 only?
3: Yes, sir, absolutely.
2: Nah, 750 na bhai. Tere 1500 lagenge. Hamari baat samajh mein na aa rahi. Lajwanti ki ekdam gheje mein pad gayi.
0: Mirchi Murga, Naveed ke saath. Only on Mirchi. It's

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और चलिए आज की शाम में करते हैं थोड़ा रियल टॉक। जी हाँ यार, आजकल मार्केट ना हर वीक चेंज हो ही जा रहा है। कभी रेट्स ऊपर, कभी नीचे, कभी सेंटिमेंट ही फ्लिप, तो कभी इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा कि यार ड्राइव टाइम भी ना थोड़ा सा दर्द दे रहा है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं होता है कि मार्केट क्या कर रहा है, बल्कि ये होता है कि यार मेरा बजट क्या क्या अलाउ कर सकता है। स्पेशली अगर होम बाइंग के बारे में बात करूँ ना, तो स्मार्ट होम बाइंग ट्रेंड फॉलो करने से नहीं, बल्कि नंबर्स को ढंग से समझने से होती है कि आप कितना कंफर्टेबली कोई भी नया घर अफोर्ड कर सकते हो और किस तरह प्लान कर सकते हो, स्पेशली ऐसे चेंजिंग सिचुएशन में भी। और इसी क्लैरिटी के लिए एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए आए हैं मेरे दोस्त बीच फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। तो चलिए ऐसे डायनामिक मार्केट में बजट को कैसे स्मार्टली प्लान करें, सुनते हैं बीच से। ओवर टू यू बीच।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Parlor Banquet Edison.
3: Har gana hit, har dusra gana super hit.
4: Only on Radio Mirchi. It's hot.

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

हर सीजन की अपनी एक पर्सनालिटी होती है और समर की पर्सनालिटी मुझे सबसे ज्यादा फिल्मी लगती है। शाम शाम द लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और दिन लंबे होते हैं, शामें धीरे धीरे उतरती है और लगता ही नहीं कि घर जाने की कोई जल्दी है। पार्क्स में बच्चे खेल रहे होते हैं, कोई आइसक्रीम लेकर वॉक कर रहा होता है, कोई यार लॉन चेयर निकाल कर बस हवा इंजॉय कर रहा होता है। और मुझे ना समर की सबसे प्यारी बात ही यही लगती है कि ये सीजन हमें घर से बाहर निकलने का बहाना दे ही देता है। कोई ग्रैंड प्लान की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस एक छोटी सी इवनिंग ड्राइव भी पूरे दिन का मूड चेंज कर देता है। तो आज अगर घर जाते वक्त थोड़ा लंबा रूट मिल जाए तो शायद शॉर्टकट लेने की जरूरत ही नहीं। और बताइए दोस्तों, समर की कौन सी एक ऐसी चीज है जिसके बिना वो कंप्लीट ही नहीं लगता? आइसक्रीम, बारबेक्यू, लॉन्ग ड्राइव्स या सनसेट वॉक्स? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, क्योंकि यार मेरा तो कोई भी सीजन एक प्यारे से गाने के बगैर कंप्लीट ही नहीं लगता। तो चलिए बजाते हैं वही गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: न्यूयॉर्क में लंबी लंबी बिल्डिंग्स होती है ना, प्लेन से देखा था।
2: शशि वो मैनहट्टन है।
1: मैनहट्टन
3: मैन आदमी हैट टोपी और मॉम व्हाट्स टैन इन हिंदी
2: टैन मतलब वो धूप की छाप।

एक एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जहाँ इतने सारे गाने बनते हैं, कभी कोई हिट होते हैं, कभी कोई फ्लॉप, लेकिन कभी कभार कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं ना जिसके सारे के सारे गाने एक से बढ़कर एक होते हैं, जिसको आप स्किप ही नहीं कर सकते और वो टाइमलेस रह जाते हैं। जी हाँ, 2007 की मूवी सलाम इश्क, वो एक ऐसा बॉलीवुड म्यूजिक का एल्बम था जिसके यार इतने अमेजिंग गाने थे। मतलब ये एल्बम नहीं था, ये तो थी एक म्यूजिकल थाली, क्योंकि 6 अलग कहानियां और उससे भी ज्यादा उनके अमेजिंग से जज्बात जो कि कैप्चर हुए थे हर एक गानों में। तो चलिए, इसी का एक गाना है सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। दोस्तों इसमें तो यार 6 जोड़ियां एक ही फ्रेम में दिख रही थी और लोगों ने कहा कि ये ना कहीं ना कहीं बॉलीवुड का एवेंजर्स मोमेंट था, क्योंकि वैसे तो एवेंजर मोमेंट 2008 में आया था, लेकिन बॉलीवुड ने बहुत ही पहले, इट वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम इन 2007, इतने सारी जोड़ियां एक साथ, इतने सारे सिंगर्स एक साथ आए थे इस एक गाने के लिए, सलाम इश्क द टाइटल ट्रैक। वैसे तो यार सॉन्ग का स्केल और ग्रैंडियर देख के यही लगता था कि किसी अवार्ड शो के लिए ही ये गाना बनाया हो, क्योंकि शूटिंग के लिए भी इतना मैसिव सेट डिजाइन हुआ था और सारी जोड़ियों को एक ही दिन में सिंक प्रैक्टिस करनी थी। तो जी हाँ, सारे जो बॉलीवुड की जोड़ियां थी वो तो इस गाने में थी, लेकिन सारे जो म्यूजिकल सिंगर्स यानी सोनू निगम, श्रेया घोषाल, कुणाल गांजावाला और भी कई सारे सिंगर्स एक ही साथ इस गाने में थे, तो ये गाना तो एक शादी थीम बनना ही था। चलिए सुनते हैं सलाम इश्क टाइटल ट्रैक फ्रॉम द मूवी सलाम इश्क। लेकिन आप भी बताइए वो कौन सा ऐसा एल्बम है जिसका कोई भी गाना आप स्किप नहीं कर पाते। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक सलाम इश्क का ये टाइटल ट्रैक राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La vierba la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hello.
2: Hello.
3: Yeah, Jadeep.
2: हाँ जी
3: ये भाई साहब एक सेकंड होल्ड करना. ये आपके डिपार्टमेंटल स्टोर से मैंने टॉर्च ली थी, छेनी ली थी और हथौड़ा लिया था.
2: हाँ जी
3: ये आपके अच्छी क्वालिटी क्या क्या यार दूसरों को आप बेवकूफ बनाते हो.
2: मतलब
3: आपने कहा था ना कि ये अच्छी क्वालिटी के हैं.
2: तो भाई साहब अच्छी क्वालिटी के लिए
3: मैं यही कह रहा हूँ. तो काम करेगा जब अच्छी क्वालिटी के.
2: तो भाई साहब आप काम यूज तो करो उसको. काम क्यों नहीं करेंगे.
3: क्या यूज करूँ, आधे घंटे से यूज कर रहा हूँ, कोई फायदा नहीं हो रहा.
2: भाई साहब आप सही से यूज करिए, बढ़िया क्वालिटी की दी है आपको.
3: क्या बढ़िया क्वालिटी की दी है.
2: अरे यार बढ़िया क्वालिटी के दिए, 50 लोग आते हैं लेके जाते हैं, यूज कभी किसी ने कंप्लेन नहीं
3: की. तो काम तो हो नहीं रहा ना, काम नहीं हो रहा.
2: आप सही से काम करके देखिए ना, काम नहीं करेगा.
3: एक सेकंड अभी तुम्हारे सामने ही खोलता हूँ, कोई आना जाए बस. ये तो है भी बड़ा रिस्की. ये इसमें मैं चाबी लगा रहा हूँ, ये टॉर्च चला ली ठीक है. ये रहा थोड़ा, नहीं खुल रहा. पिछले आधे घंटे से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं खुल रहा.
2: अबे तो हथौड़ा जोर से मारना तभी. अच्छा, तो खुलेगा.
3: हथौड़ा जोर से मार तो सिक्योरिटी नहीं आ जाएगी. अभी तो कुछ हाथ भी नहीं लगा, पहले ही पकड़ा जाऊंगा. चीजें बेचते हो गारंटी देते नहीं हो कि सर ले जाओ बढ़िया क्वालिटी की दे रहा हूँ. 5 खोल के देख ली मैंने, पूरे बैंक में 5 लॉकर है, एक नहीं खुल रहा. कि सर ले जाओ हमारा यकीन करो. आप जो कहोगे हो जाएगा काम, कर लिए काम. जान पे रिस्क लेके तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, आधे घंटे से खोली नहीं रही.
2: तो कहाँ पे है तू?
3: बैंक में.
2: अबे तू पागल है क्या? बैंक क्या कर रहा है वहाँ पे?
3: सारा अपने हथौड़ा ना चलने पर. अपना हथौड़ा ना चलने पे आप लोग सारा ने.
2: अबे भाई तू कर क्या रहा है यार? ये
3: खोलूंगा ना, खुल ही नहीं रहा, क्या करूँ आप.
2: अबे अबे भाई भाई भाई तू जो कर रहा है कर. तू फोन रख भाई, मेरे पास कॉल मत करियो.
3: ठीक है मैं वापस कर रहा हूँ. ठीक मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

कभी कभी लाइफ को कंप्लीटली चेंज करने के लिए बहुत साल नहीं, बस एक डिसीजन काफी होता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और हम अक्सर सोचते हैं कि यार नया करियर स्टार्ट करना मतलब लॉन्ग वेट, लॉन्ग प्रोसेस, पर हर जर्नी इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं होती। अगर आप हेल्थ केयर फील्ड का हिस्सा बनना चाहते हो तो शायद ये बिगिनिंग आपकी सोच से ज्यादा क्लोज हो, क्योंकि एज लेस एज 1 month ट्रेनिंग यू कैन नाउ बिकम अ फ्लेबोटमी टेक्नीशियन बाय जॉइनिंग एम्स एजुकेशन, क्योंकि प्रोग्राम्स ऑनलाइन और ऑन कैंपस दोनों जगह ऑफर्ड है। आज ही कॉल कीजिए 9082220002, 9082220002, या फिर विजिट कीजिए aimseducation.edu, क्योंकि क्या पता शायद हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपका करियर बनाने का सपना सिर्फ एक डिसीजन दूर हो। और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: मिर्ची हॉट माइक, लॉग आउट ऑफ वर्क, लॉग इन टू फेम।
2: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

एक ऐसा एल्बम जिसके सारे के सारे गाने सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जी हाँ, बातें हो रही है यार कि कभी कभी कुछ ऐसे एल्बम्स बन जाते हैं कि जिसका कोई भी गाना मन ही नहीं करता कि हम स्किप करें। और वो जब ज़माना आता था ना कि जब कैसेट्स आती थी, तो एक ऐसी कैसेट उस एल्बम की बाय करना तो फुल ऑन पैसा वसूल लगता था। और ऐसा ही एक एल्बम था 2007 का, सलामे इश्क, जिसके यार हर एक गाना बहुत ही अमेजिंग था। सलाम है, इस टाइटल ट्रैक के बारे में तो हम बात कर ही चुके हैं, लेकिन और एक गाना इस एल्बम का, तेनु लेके, जो कि गाया गया है सोनू निगम एंड महालक्ष्मी अय्यर ने। वैसे तो यार इस गाने के लिए सलमान खान ने जो डांस किया था और उनकी जो एंट्री आई थी, वो एंट्री कई सारी शादियों का एंथम बन गया था। मतलब इतने सारे दुल्हों ने उसी गाने पर अपनी एंट्री की है कि यार बस तेनु मैं लेके जावांगा, ये एक शादी के लिए बहुत ही बेस थीम बन गया था। और ना सिर्फ शादी के लिए यार, मतलब प्रपोजल के लिए भी यही गाना यूज करते थे। जी हाँ, ऑलमोस्ट फॉर अ डेकेड ये चला, जब तक कि नए गाने नहीं आए। तो वन ऑफ द हिट सॉन्ग्स ऑफ दिस एल्बम, तेनु लेके मैं जावांगा, सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने गाया हुआ ये गाना, वन ऑफ द मोस्ट मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग। तो चलिए इसे प्ले करते हैं, लेकिन और भी एक गाना बाकी है इसी एल्बम का। वैसे आप भी मुझे अपनी रिक्वेस्ट जल्द से जल्द भेज सकते हो, DM मी ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi, SIDDHI, कि इस एल्बम का आपको कौन सा गाना पसंद है, जल्दी से बताइए। और तब तक के लिए तेनु लेके मैं जावांगा, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: कभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।
4: तेरा क्या होगा कालिया?
5: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
4: अब मिर्ची खा।
6: Radio Mirchi, it's hot.

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे इतने सारे गाने जहां बनते हैं, कुछ फ्लॉप कुछ हिट, लेकिन यार कुछ ऐसे एल्बम्स बनते थे जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक होता था। और 2007 में रिलीज हुआ एक ऐसा एल्बम सलामी इश्क, जी हाँ, शंकर महादेवन के मैक्सिमम कंपोजिशंस इस एल्बम के लिए थे। और हर एक गाना यार ब्लॉकबस्टर था, मतलब आप स्किप भी नहीं कर सकते, चाहे वो बाबूजी धीरे चलना का रिमिक्स वर्जन ही क्यों ना हो। तो यार इसी एल्बम का एक जो सॉन्ग है वो बहुत ही खास है, एंड दैट इज मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। वैसे तो यार इस गाने को जब फिल्माया गया था तो इतने सारे कपल्स हैं इस मूवी में, जॉन अब्राहम विद्या बालन हो, उनकी केमिस्ट्री तो बहुत ही अमेजिंग थी, फिर चाहे हमारी प्रियंका चोपड़ा और सलमान खान हो, लेकिन यार सबसे ज़्यादा जो अमेजिंग केमिस्ट्री थी, जिसने लोगों का दिल जीत लिया था, दैट वॉज शैनन एसरा एंड गोविंदा की। मतलब ये गाना स्पेसिफिकली जिसमें शैनन एसरा ने बहुत सारे एथनिक कॉस्ट्यूम्स पहने थे और गोविंदा बीन गोविंदा अलग अलग जगहों पे डांस किए जा रहे थे, मतलब कहीं हवेलियों के सामने कहीं ट्रक पर, दिस सॉन्ग वॉज रियली रियली ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड। और गोविंदा के डांस मूव्स, मतलब दे वर किलिंग इट, दे वर टोटली किलिंग इट। तो वेरी वेरी क्यूट सॉन्ग और बहुत ही क्यूट जोड़ी लग रही थी शैनन एसरा और गोविंदा की। वैसे यार ये गाना इतना ज़्यादा प्यारा है तो यू कैन लिसन टू इट एनी टाइम। तो अभी मैं आपके लिए बजाने वाली हूँ मेरा दिल दिल मेरा, संग बाय शान एंड निहिरा जोशी। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो इस एल्बम का आपका कौन सा फेवरेट गाना है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी, SIDDHI। और तब तक के लिए सलाम इश्क का मेरा दिल, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और स्वागत है आपका आज की इस खूबसूरत शाम में। वैसे खूबसूरत शाम के खूबसूरत गाने तो बज ही रहे हैं, लेकिन यार एक ऐसा खूबसूरत एल्बम निकला था जिसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे। 2007 की रिलीज्ड सलाम इश्क की मूवी का जो गाना है, सॉरी जो एल्बम है, उसके सारे के सारे गाने अमेजिंग थे यार। शंकर एहसान लॉय ने इस एल्बम को कंपोज किया था और इसके काफ़ी सारे गानों के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, लेकिन एक गाना है जो आपने रिक्वेस्ट किया है। जी हाँ, आदित्य पाटिल एडिसन में जो रहते हैं, उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया इसी एल्बम का, एंड दैट इज दिल क्या करे संग बाय अदनान सामी। वैसे तो यार दोस्तों, सलाम इश्क का टाइटल ट्रैक तो अमेजिंग था ही, लेकिन उसी टाइटल ट्रैक का एक अलग वर्जन बनाया गया था दिल क्या करे इस गाने में, अदनान सामी की मैजिकल वॉइस में। और एक खास बात थी इस गाने की कि यार इस गाने का जो पूरा मूड है, पूरा रोमांटिक मूड है, यू नो पूरा रोमांस ओवरलोडेड है इस गाने में, लेकिन उस रोमांस के वाइब को रखने के लिए यानी सेटअप करने के लिए रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ना सिर्फ एक कैंडल जलाई थी ताकि एक नो अच्छा सा मूड सेट हो जाए और अदनान सामी एकदम हैप्पी लिए गाना गा पाए, एकदम अमेजिंग मूड में, शाम वाले मूड में। और ऐसा ही कुछ हुआ, बस रिकॉर्डिंग स्टूडियो में एक कैंडल जलाई गई थी और उसी कैंडल की लाइट में अदनान सामी ने अपनी मैजिकल आवाज में ये गाना गाया। तो चलिए आदित्य के लिए बजाते हैं दिल क्या करे फ्रॉम द वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एल्बम्स सलाम इश्क 2007 की रिलीज। वैसे दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा कोई एल्बम पता है जिसके सारे के सारे गाने आपको पसंद है तो टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDH। अच्छा है क्योंकि बजाते हैं यार उस एल्बम के सारे गाने राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। मिर्ची इसका बना उसका बना सबका बना बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
1: हेलो
2: हेलो अंशिका, ये अंशिका आपका ये प्रोफाइल देखा था मैट्री मॉल पे, तो आपकी शायद बात भी हुई थी विनोद जी से, मैं भी ने भी मैट्री मॉनिटर पे डाल रखा है, तो
1: हाँ जी,
2: मैं सोच रहा था आपसे बात करने के लिए।
1: जी बताइए, नाम क्या है?
2: संतोष। संतोष
1: संतोष
2: संतोष। सो क्या चल रहा है अभी? आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया ना मैंने?
1: नहीं नहीं कोई बात नहीं।
2: तो अभी ना मेरे चोपड़ा जी से जब बात हो रही थी ना, तो उनसे उन्होंने कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मैंने आपका नंबर उनसे ही लिया है।
1: संतोष क्या करते हो? व्हाट डू यू डू?
2: I am entrepreneur. दुकान है मैडम कपड़े की, अपनी दुकान है। Anjika, this is Naved. I'm calling from Radio Mitch. God bless you. आप ऐसी हंसती रही है, शादी तो ऐसी हो जाएगी, हंस क्या?
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, only on मिर्ची, it's hot.

कभी कभी कोई गाना ऐसा होता है जो बजते ही शाम का मूड चेंज कर देता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और 2000 एरा का एक ऐसा ही टाइमलेस ट्रैक है कल हो ना हो। यार जैसे ही उसका सॉफ्ट पियानो इंट्रो शुरू होता है ना, सडनली सब कुछ थोड़ा सा स्लो लगने लगता है। ड्राइव हो, चाय हो, या बस विंडोज से बाहर देखना, यार इस गाने की खूबसूरती ही ये है कि ये लाउड नहीं है पर इम्पैक्ट बहुत ही ज्यादा डीप है। सिंपल सी मेलोडी है, सोलफुल सी आवाज है, वो भी सोनू निगम की, और वो लाइन जो याद दिलाती है कि हर दिन को ना थोड़ा और अप्रिशिएट करना चाहिए। और इसीलिए जब भी ये ट्रैक रेडियो पे आता है ना, लोग ऑटोमेटिकली वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा ही लेते हैं, क्योंकि कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं होते, वो ना मूड बन जाते हैं। तो दोस्तों आप भी बताना कि कौन सा ऐसा बॉलीवुड का गाना है जो सुनते ही आपको भी वो पॉज और फील मोमेंट मिलता है। डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए आपके लिए कल हो ना हो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: पूरा जर्सी जानता है यहाँ के लोगों में टैलेंट है अनेक।
1: इंडियन अमेरिकन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स मिर्ची हॉट माइक।
0: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक या फिर कोई भी यूनिक टैलेंट, तो उठाओ फोन और छा जाओ। व्हाट्सएप करो हॉट माइक टू 9033647244 यानी 9033 मिर्ची।
1: Mirchi Hot Mic. Log out of work, log into fame.
2: Grand finale at Entrepreneurs Expo and Fun Fest on September 27th at Bala Banquet Edison.
3: Breaking news, Mirchi par aane wala hai hit gana.

हर प्यार की एक किस्मत होती है दोस्तों, कुछ मिल जाते हैं और कुछ गाने बन जाते हैं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और तुम मेरे ना हुए ना सही। ये वो गाना है जो सुनकर ना सिर्फ दिल भर ही नहीं आता, झूम भी उठ जाता है। मतलब थामा का ये जो नया ट्रैक है, रश्मिका मदाना की थ्रू, एक आग भी है और एक आंसू भी। सचिन जिगर का म्यूजिक, अमिताभ भट्टाचार्य के जो लिरिक्स है, मिलकर ऐसा कमाल करते हैं कि मान लो यार प्यार और पेन एक साथ बैठ चुके हो चाय के कप के साथ। मजे की बात तो ये है कि शूटिंग के दौरान रश्मिका ने सिर्फ वन टेक में ये डांस किया था और पूरे के पूरे क्रू ने क्लैप करके उनकी तारीफ की थी, क्योंकि वो सीन प्योर हार्ट ब्रेक का रियल मोमेंट बन गया था। वैसे अगर आपने ये गाना सुना है तो आपको ये गाना कैसा लगा, टेल मी ऑन इंस्टेट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और अगर नहीं सुना है तो चलिए बजाते हैं आपके लिए, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: अभी जर्सी की स्ट्रीट पर, कभी छोटी छोटी पार्टीज के बीच।
1: अर्ज किया है, चांदनी रात थी, दौड़ रहा था सोने का घोड़ा, तबड़क तबड़क।
0: छुपी होते हैं वो आवाज के जादूगर जो अपनी सिंगिंग, कॉमेडी और शायराना अंदाज से सबका दिल जीत लेते हैं। द स्टेज इज सेट। इंडियन अमेरिकन विमेन एंटरप्रेन्योर्स एसोसिएशन प्रेजेंट्स साल का सबसे बड़ा टैलेंट हंट, मिर्ची हॉट माइक।
2: सिंगिंग, स्टैंड अप, शायरी या मैजिक, कोई भी हो टैलेंट, आज ही रजिस्टर करें। व्हाट्सएप पर लिखिए हॉट माइक और भेजिए टू 9033647244, यानी 9033 मिर्ची।
3: ग्रैंड फिनाले एट एंटरप्रेन्योर्स एक्सपो एंड फन फेस्ट ऑन सितंबर 27th एट पार्लर बैंक्वेट एडिसन।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और इसी प्यारी सी एनर्जी के साथ आई एम साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट। और वैसे तो हमने आज थोड़ी लोकल, थोड़ी फिल्मी, थोड़ी ओटीटी और बहुत सारी नॉस्टैल्जिया शेयर की है और होप आज की जो आपकी शाम है थोड़ी सी लाइटर और ज़्यादा फिल्मी बन गई हो। और इसी के साथ कल मिलते हैं फिर एक बार विथ नई गपशप और नए सॉन्ग रिक्वेस्ट। तो अपनी सॉन्ग रिक्वेस्ट की लिस्ट रेडी रखना, सेंड मी ऑन इंस्टा @rjmirchisiddhi और आप कहीं ना जाइए क्योंकि मिर्ची रोशी आने वाली है लव के नए फंडे लेकर। तो तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागे।